आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Thank you so much. Thank you, thank you. That was lovely.
1: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Break 106.2 The Beat of Bollywood.
1: Digestion Cool Tips with Dabur Pudin Hara.
2: AC से रूम कूल होता है, डाबर पुदीन हरा से टमी फील्स कूल. वन टाइनी पर्ल विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स हेल्प सूथ इनडाइजेशन डिस्कम्फर्ट नेचुरली.
1: डाबर पुदीन हरा, स्टे इनडाइजेशन फ्री द नेचुरल वे. कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन.
3: डिड यू हियर दैट? दैट्स द साउंड ऑफ समथिंग बिग लैंडिंग एट पापा जॉन्स. New oven toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. Six bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एकतरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Recalculating route to Sharaf DG for back to school shopping.
2: Parents, you heard that right. Win up to 5,000 dirhams back on laptops and tablets. Get gifts worth 500 dirhams and enjoy an extra 5% student and teacher discount. And that's not all. Save up to 200 dirhams with DIB and Al Hilal Bank. Power up for AI amplified learning. Shop in store or online. TNC Supply.
3: Taqat ka tarkaab with Dabur Shilajit.
4: हर दिन को बनाइए बेटर विद अ स्ट्रॉन्ग रूटीन हेल्दी हैबिट्स के साथ डाबर शिलाजीत को अपनी डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए और रहिए एक्टिव
3: ताकत का तड़का विद डाबर शिलाजीत कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स
5: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटती सिर्फ मेरा हक है इसमें सिर्फ मेरा अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो डर कैसे
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

7:10 It's a Tuesday morning, 18th of August. This is Big 106.2. And क्या चल रहा है? कैसा रहा आपका वीकेंड? मैं पूछूंगा, बिकॉज आई एम बैक, जस्ट बैक फ्रॉम अ स्मॉल लिटिल वेकेशन माई सेल्फ, एंड आई एम रियली काइंड ऑफ यू नो फीलिंग जो लोग बोलते हैं ना कि एक तो वेकेशन पे जाओ, उसकी प्लानिंग करो, फिर वेकेशन पे जाओ जस्ट टू रिलैक्स, यू नेवर एबल टू रिलैक्स एंड यू कम बैक एंड स्टार्ट प्लानिंग द नेक्स्ट वेकेशन बिकॉज यू नीड अ वेकेशन टू गेट रेड ऑफ दिस वेकेशन. उस तरह का कुछ सिचुएशन मेरे साथ हो रहा है. बट या, व्हाट इज योर सिचुएशन लाइक? आई मीन राइट बिफोर द स्कूल्स रीओपन ऑन द 31st, आर यू प्लानिंग अ ट्रिप? क्या है इन द नेक्स्ट 10-12 डेज? एनीथिंग अमेजिंग कमिंग अप? आज के दिन में ऑलवेज फील फ्री टू व्हाट्सएप मी, 0543091062 इज द नंबर. कुछ देर में कमिंग अप फ्रॉम कॉकटेल टू जब तलक. इफ इज अ सॉन्ग दैट रिचार्जेस योर बैटरीज लाइक नो अदर, लेट मी नो. दैट्स द नंबर, 0543091062. पहला घंटा ऑफ द शो जस्ट लाइक एवरी वीकडे इज द अर्ली मॉर्निंग रिक्वेस्ट आर.

0: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: 7:21 मिनट ऑन दिस ट्यूसडे की सुबह 18th अगस्त एंड कल से एक अमेजिंग चीज की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई इन केस यू वन ऑफ दोस औस्ताख ड्राइवर्स जिनके कुछ ब्लैक पॉइंट्स हैं. यू कैन गेट 4 ब्लैक पॉइंट्स रिमूव्ड एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू द डे विदाउट एक्सीडेंट दैट्स गोना हैपन ऑन द 31st ऑफ अगस्त. आप पूछ रहे हो कि यार 31st ऑफ अगस्त व्हाई इज दैट पर्टिकुलर डे डे विदाउट एक्सीडेंट्स. All the parents, bhai, samjhao in loko. Yeah, I'm sure you don't have any kids because 31st of August is when the new school session starts. It's back to school on the 31st of August. So, it's basically, you know, the authorities saying ki us din, agar aap without accident reh ke dikha pao, tab hum aapko manenge. Tab aapki driving skills ko hum manenge ki aap sudhar gaye ho, ye hum janenge. And that is why aapke 4 black points hat sakte. Yesterday is when the registration for this has started. You can register using your UAE pass, sign the road safety pledge, and if you meet the campaign conditions and drive without violations for an entire day, 4 black points can be cancelled. So you can head out, just head out to Google and find all the relevant information out there. So the day without accidents, 31st of August. A film not without its share of accidents. Pati Patni aur wo dost se Roop Diyo Rani coming up. रंधावा का ये गाना. फॉर अबाउट 40 मिनट्स टू गो फॉर द अर्ली मॉर्निंग रिक्वेस्ट. आपको एक गाना अगर आपको सुबह सवेरे रिक्वेस्ट करना है खुद के लिए किसी स्पेशल के लिए, आर इस स्पेशल नंबर 0543091062. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सेड.
2: तुम बीमार हो?
3: नो.
2: तो लेती क्यों?
3: मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं.
2: कैसे हैं सेंसेशंस?
3: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, दिल को धड़क मगाहट, फरफराहट, थरथराहट, टपक पार भरभराहट, थरथराहट, टपक पार भरभराहट, टपटपट, छटपटा, टपटपटा, झुबुआ, झुबुला, झुबुलाई, झुबुलाई.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
4: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
5: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड.
4: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
5: मिडल ईस्ट का नंबर 1 ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है. शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में.
4: चलो चले अलराज.
0: The Big Thrill with Mansi. Weekdays 5 p.m. to 9 p.m. on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit. The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color. Made in Italy.
6: Namaste.
7: Hola.
6: Assalamualaikum.
8: Bonjour.
9: Ni hao.
8: Did you know? Now, just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
10: Kehte hai na, try and try till you succeed. Haar na maan mere sher. Mazboot ban mazboot. Mitao kamzori. Badhao rozana zindagi ki taakat, shakti aur josh. Dabur Shilajit Capsules. Ayurvedic supplement for men. Aapki jeet, Dabur Shilajit. Consult your doctor before taking medicine and pharmaceutical products.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: मॉर्निंग 7:26 ऑन द क्लॉक, 36 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, मोस्टली सनी पार्टली क्लाउडी आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेदर, मौसम का हाल, ह्यूमिडिटी 57%, विंड्स ब्लोइंग एट 21 किलोमीटर पर आवर, हाइज ऑफ 40, लोज ऑफ 36 डिग्रीज।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: और अगर ताकत और जोश से आपको ब्रेकअप हो गया, आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में ताकत की कमी होना, कमजोरी फील करना इज वेरी कॉमन, बिकॉज स्ट्रेस, फास्ट फूड, फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल कैन ऑल मेक यू फील लो, बट यू डोंट हैव टू हैव. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, दे हेल्प इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड पावर. शेर की तरह बने मजबूत, हर दिन की शुरुआत करें विद डाबर शिलाजीत. मिटाए कमजोरी, बढ़ाए रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. 100% नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स दैट मेक यू फील स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉन्फिडेंट. आपकी जीत. डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. कहां पर आरटीए ने कहा दैट पीक आवर जर्नी टाइम्स कैन ड्रॉप बाय 30%. कमिंग अप, दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.
1: Beat 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: पी कार ट्रैफिक जर्नी टाइम कहाँ पे कम हो गया 30%, दैट्स व्हाट द आरटीएस सेड.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: इजंट इट अमेजिंग दैट एवरी सिंगल डे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ यूएई ट्रैफिक देयर इज सम गुड न्यूज और द अदर. आज की गुड न्यूज कहाँ पर है भाई, देयर इज अ 1.1 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ अल मारविया स्ट्रीट, अल खेल रोड एग्जिट और अल असाइल स्ट्रीट के बीच में. एक बार फिर 1.1 किलोमीटर का स्ट्रेच अल मारविया स्ट्रीट बिटवीन अल खेल रोड एग्जिट एंड अल असाइल स्ट्रीट, दैट्स बीन कंप्लीटेड. कैपेसिटी इज अप बाय 30%. पी कार ट्रैवल टाइम इज ऑल्सो डाउन बाय द सेम अमाउंट एंड क्यूज एट वन जंक्शन आर डाउन 50%. एंड दैट्स व्हाट द ऑफिशियल रिलीज इज, दैट्स व्हाट द ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम द आरटीए. भाई इट इज just amazing. Kitne feathers in the hat, matlab it's less a hat, more like just a bird, right? That's how the amount of feathers the RTA has. Aap kahin par agar traffic mein phanse hain, there's an information traffic update that you want to give me, the number is 800-1062. That's the number to call. Coming up next, a traffic update.
2: Yehi kehna meri to kar le aaj.
0: One of my favorites coming up in just a while, Pati Patni Wo Do Se Angdai, Tanish Bagchi ka ye gana. On the vocals, Fahim Abdullah. This is The Big Breakfast with me, Sid.

0: टेस्ट मैच देखते हो क्या आप टीवी पर? डू यू वॉच टेस्ट क्रिकेट ऑन टेलीविजन?
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: बिकॉज़ दैट इज द ट्रू टेस्ट. आई मीन नो पन इंटेंडेड कि आप कितने बड़े क्रिकेट फैन हैं. ये कहने से कुछ नहीं होता कि यार नहीं मैं बहुत बड़ा क्रिकेट फैन हूं. अगर आप टेस्ट क्रिकेट टीवी पर देखते हैं देन यू आर अ बिग क्रिकेट फैन. डू यू स्टिल वॉच? बट देन यू नो दिस इज द थिंग कि इट्स काइंड ऑफ लॉस्ट इट्स स्पार्कल अ बिट. आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट. हां, सो डू यू स्टिल, दैट इज द क्वेश्चन, डू यू स्टिल वॉच टेस्ट क्रिकेट ऑन टेलीविजन? इफ येस, आई डेफिनेटली वॉन्ट हियर फ्रॉम यू. गिव मी अ कॉल 800-1062 पर. यू नो वेर आई एम हेडिंग विद दिस. इंडिया श्रीलंका का फर्स्ट टेस्ट मैच स्टार्टेड ऑन द 15th ऑफ ऑगस्ट. 462 पे इंडिया स्कोर्ड इन द फर्स्ट इनिंग्स. एंड देन यू नो सम प्लेयर्स जिनकी खुशी में ही हमारी खुशी होती है. वैसे एक नाइस गाय ऑफ इंडियन क्रिकेट देवदत्त पटेकल इज बीन वेटिंग इन द विंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. फाइनली गॉट हिज टाइम अंडर द सन. 167 ही स्कोर्ड अ बिग डैडी 100, जैसे रवि शास्त्री कहते हैं. He scored a daddy 100. Then 82 by KL Rahul. Dhruv Jurel scored 51. And India firmly in control, because in their first innings, Sri Lanka were bundled out for 284. This new player called Sonal Dinusha scored 100, exact 100. And Nirushan Dikwala scored 80 as well. So Sri Lanka still trailed by 178 runs at stumps. This is The Big Breakfast with me, Sid. Here's the Rang De Lal version of Oye Oye from Dhurandhar the Revenge. Keep it locked to Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 8:08।
1: बॉलीवुड।

0: Big 106.2 पर दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: अभी की एक्साइटमेंट थी इस फिल्म को लेकर के, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक गेटिंग अ स्कोर अपडेट ना, कि सम मैच दैट यू लुक फॉरवर्ड टू, कि भाई क्या हुआ मैच में क्या. So that's, I'm just back after a short little vacation. So, I mean, Awarapan 2 ki kya reviews rahe? And it seems that it's quite mixed. And when you say ki 2.5 out of 5 stars, 2.5 se lekar 3 ke beech mein stars hain, and then there are so many diehard fans of Imran Hashmi, lagta hai ki logon ko film itni pasand nahi aayi jitni ki wo soch rahe the ki unko pasand aayegi. In case you have seen Awarapan 2 and if you have like a couple of words ka review, then WhatsApp it to me, 054-309-1062. Coming up. गाने तो अमेजिंग है ही. आवारापन 1 के 2 में द गाने कंटिन्यू. फॉर एग्जांपल तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. मिथुन ट्राइंग टू रिक्रिएट द मैजिक ऑफ आवारापन 1. कमिंग अप कुछ देर में द बिग बॉलीवुड क्विज. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.

0: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल। जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
1: फासन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फ्रॉम हाई स्पीड चेजेस डाउन द ऑटोबान टू ड्रामेटिक डॉन 2 स्टाइल व्यूज, वी टेकिंग यू स्ट्रेट इनटू अ ब्लॉकबस्टर एडवेंचर। वी आर कीपिंग इट अ टॉप सीक्रेट, सो स्टार्ट गेसिंग। Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor Daniel Properties, title sponsor Papa John's, associate sponsor Ford. Coming soon on Big 106.2.
2: Namaste.
3: Hola.
2: Assalamu alaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
4: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
6: Wow, your hair color looks stunning.
7: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
6: Yeah, right.
7: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
6: Really?
7: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
6: I'm buying it right now.
7: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
8: InsuranceMarket.ae. What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the MyAlfred app. InsuranceMarket.ae.
0: The Big Breakfast, brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
11: ठीक सवार ऑन दिस ट्यूसडे मॉर्निंग, 37 डिग्रीज सेल्सियस राइट नाउ, पार्टली सनी एज ऑफ नाउ, ह्यूमिडिटी एट 50%, विंड्स काफी तेज, टोपी संभाल के दिन कर रहा हूं, 23 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से हवा चल रही है, हाईज ऑफ 40, लोज ऑफ 36 डिग्रीज।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: with Dance Meri Rani featuring Nora Fadehi. This is Big 106.2.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: One of those big luminaries of the film industry, one of those pillars of the industry. Unka aaj birthday, 18th of August. And yeah, lots of clues I gave you last time. We're playing the big Bollywood quiz. Agar aap jeetna chahte hain, do open movie tickets. Batai kiski baat kar raha hoon. 800-1062 pe aapko call karna hai. One of the most amazing moments was when he received a Filmfare Award. Filmfare Award lene ke liye wo stage pe gaye. Aur wahin par on the spot unhone for the Black Lady Filmfare ki jo trophy hai, uske liye ek wahin pe kuch line likh ke suna di.
2: Baad muddat ke phir mili ho tum, ye jo thodi si bhar gayi ho tum, ये वजन तुम पे अच्छा लगता है.
0: Yeah, so he is one of those most creative people in the industry. ये आवाज किसकी थी आपको मुझे बताना है. उनका आज जन्मदिन है. एंड इफ यू गेट द आंसर करेक्ट, यू गेट टू ओपन मूवी टिकट्स. गिव मी अ कॉल राइट नाउ 800-1062 पर. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि उनका असली नाम एक्चुअली संपूर्ण सिंह है. एंड देन एक्सीडेंटली गॉट इज फर्स्ट सॉन्ग एज अ लिरिसिस्ट बिकॉज कुछ डिस्प्यूट हो गया था ऑफ द लिरिसिस्ट हु एक्चुअली देयर शैलेंद्र विद एस डी बर्मन एट्सेट्रा. तो उस एरा के ये लिरिसिस्ट हैं. सो देन ही वेंट ऑन टू मेक हिज फर्स्ट फिल्म. मेरे अपने वॉज फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर इन 1971. किसकी मैं बात कर रहा हूँ. इफ यू नो द आंसर 800-1062 इज द नंबर.
3: दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर.
4: ओह माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:10।
1: Bollywood.

0: 9:13 minute. This is Big 106.2.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: We are playing the Big Bollywood Quiz. Then I've got Naman with me on the phone line. Naman, namaskar aapko Naman.
2: नमस्कार आपको भी नमन
0: नमन या नमन सुन के पता नहीं क्यों मेरे को अमिताभ बच्चन की याद आती है बट नमन हाउ आर यू डूइंग ऑन दिस ट्यूसडे मॉर्निंग क्या हाल चाल है
2: वेटिंग फॉर द वीकेंड सिद्ध
0: व्हाट एक्सक्यूज मी इट इज द सेकंड डे ऑफ द वीक मैन
2: दिस इज हाउ वी मोटिवेट आवरसेल्फ्स सिद्ध
0: या जस्ट 4 मोर डेज टू गो कितने दिन होते वर्किंग वीक में 5 ये वही वाली बात होगी बेटा मैं सेकंड आ गया नीचे से बट नमन क्या काम करते हो ऐसा तो कि आप ट्यूसडे को वीकेंड का वेट कर रहे हो
2: थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं इधर-उधर कभी-कभार कभी ना कहीं ना कहीं काम कर लेते हैं
0: नमन साउंड्स लाइक द काइंड ऑफ गाय दैट यू वांट इन योर फ्रेंड्स ग्रुप मैन नमन बताओ यार बताओ आज मैंने आपको एक सवाल पूछा 18th ऑफ अगस्त इज वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस फिल्म फैंस बिकॉज दिस गाय हिज करियर आई डोंट नो इट्स बीन मोर देन 60 इयर्स दैट हीज बीन हीज आई थिंक हीज बीन एक्टिव इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड ही इज अ लिरिसिस्ट ही इज यू नो व्हेनेवर ही डायरेक्ट्स अ फिल्म जो कि बहुत कम होता है आई डोंट नो व्हाई बट ही ऑलवेज व्हेनेवर ही कम्स अप विद अ प्रोजेक्ट इट्स माइंड ब्लोइंग हमेशा ये सफेद में ही नजर आएंगे आपको हाँ ये ही ऑलवेज वेयर्स व्हाइट सो इवन आई थिंक अब्बास मस्तान वर इंस्पायर्ड बाय दिस गाय सो हु एम आई टॉकिंग अबाउट टेल मी
2: You're talking about Gulzar ji.
0: Yes, Gulzar is the correct answer. It's his 92nd birthday today. And Naman, batao, Gulzar ka aapka koi favorite gana ya koi life ki situation mein aapne unka gana use kiya ho to batao.
2: Sir, gana to use nahi kiya, but mere ko ek cheez yaad hai, sir, bachpan mein jab grandparents ka baithte the, to unki jo poet, jo aapko malum hai, Urdu poetry,
0: right.
2: wo bahut famous thi, aur abhi bhi famous hai, to hum wo sunte the, to usse main relate kar sakta hu, because even Gulzar ji and even my grandparents, they are coming from the same area.
0: Oh,
2: in Pakistan.
0: Punjab. Oh, okay,
2: and then,
0: okay.
2: Yeah. So that's the reason Dadaji used to talk a lot about him. And they us time the radio hota tha. Said to hum log radio pe poetry sunte the.
0: Hello. Abhi bhi radio hota hai. Aap radio pe baat kar rahe ho.
2: Us time only radio hota tha.
0: Just in case you forgot, like you know. But yeah, I completely understand what you're saying. क्योंकि मतलब जो साथ में बैठकर हम लोग with family शाम को जब radio सुनते थे. In fact, that's where the whole romance for radio for me also kind of started out, right? And there are some people in life जो कि हमें ना कुछ magic, कुछ जादू से they make us familiar. Huh? One of those is Gulzar in my life. के you know के words को कैसे construct करके how you can create magic and take your mind in places that it's never been before. That's what Gulzar has done, यार. उनके जो lyrics हैं उनके गानों के ये बाद में चल के समझ में आते हैं. ये आपके साथ हुआ क्या कभी?
2: Absolutely. सर तभी आपने आज जब सुबह नाम बोला तो एक बम से क्लिक हुआ नाम और वो क्या बोलते हैं ना people start reminiscing. कि क्या हुआ था उनके पास्ट में विद दिस पर्टिकुलर लाइन विद दिस पर्टिकुलर
0: या फॉर एग्जांपल उनका एक गाना है ये वाला इस मोड़ से जाते हैं सुना आपने गाना लता मंगेशकर का गाना है
2: बिल्कुल सुना है
0: ये गाना किसी के समझ में नहीं आता इनफैक्ट एंड ही रिफ्यूजेस टू काइंड ऑफ रिवील व्हाट इट मींस यार पत्थर के घरौंदे शीशों के नशे मन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देन देयर इज अदर सॉन्ग जो कि मेरे को बहुत ज्यादा बाद में पता चला इट वाज माय फेवरेट ग्रोइंग अप कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं राइट एंड आई वाज लाइक ये तुझसे किसकी बात कर रहा है लाइक सो देन यू वॉच द मूवी लाइक बाद में पता चला कि जिंदगी से बात कर रहे हैं इट्स लाइक यू नो वन ऑफ दोस रियली अमेजिंग अचीवमेंट्स आई'ड से राइट सो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है गुलजार साहब की ऑफकोर्स हिज फिल्म्स मार्चेस एंड यू नो इट्स नाउ लेटेस्ट कोलैबोरेशन विद विशाल भारद्वाज दैट इज लाइक वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड ना
2: Yeah, even his daughter is also back in cinema now, Meghna.
0: Yeah, she's done Talwar, which is, I think, a Meghna Gulzar film. And it's one of my favorite recent films. Yeah, amazing. So, sir, yaar, maza aagaya Naman, aapse baat karke. You seem to be a guy with a very good sense of humor and also some very good taste in films also. Congratulations. Aapne jeet liye 2 open movie tickets in the big.
2: Thank you.
0: Unfortunately, I don't think Gulzar saab ki koi film lagi bhi hai. But you can settle for second best. Enjoy yourself at the movies. Yeah, take care.
2: Thank you, sir. Thank you.
0: All right. Bye. Naman, हमारे आज के विनर हैं in the Big Bollywood Quiz. रोज सुबह ये मौका to flex a bit of your Bollywood muscle and win these 2 open movie tickets. Big.

0: आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल। जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
1: Sia self drives new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
2: Fasten your seat belts. Kyunki Dawn ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin hai. From high speed chases down the autobahn to dramatic Dawn 2 style views, we're taking you straight into a blockbuster adventure. We are keeping it a top secret, so start guessing. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor, Daniel Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsor, Ford. Coming soon on Big 106.2. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडिल ईस्ट।
6: मॉर्निंग इज 9:21 ऑन द क्लॉक, 37 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी एट 47%, विंड्स ब्लोइंग एट 19 किलोमीटर पर आवर, हाइज ऑफ 40, लोज ऑफ 34।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडिल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2। बिग 106.2। सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae।

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
4: Namaste.
5: Hola.
4: Assalamualaikum.
6: Bonjour.
7: Ni hao.
6: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
8: आपकी जीत, डाबर शिलाजीत, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. Consult your doctor before taking medicines and pharmaceutical products.
9: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. Six bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
0: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
10: One peak, 9:30 on this Tuesday ki subah, and 66 pe abhi bhi you'll find congestion, and this is going towards E11 as you get out of the creek, go towards Jadaf, and then further 5-7 minute ki der yahan par aapko expect karni hai. Then as usual, Business Bay metro station ke aaspaas ki sadkein, you'll find congestion out there. Then there is a bit of congestion also at 44. ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 मिनट की देर हेडिंग टुवर्ड्स बिजनेस बेस, स्लो मूविंग ट्रैफिक फ्रॉम रसल खोर वाइल्ड लाइफ. देन देयर इज अल टाउन स्ट्रीट पे आज काफी ट्रैफिक है, एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स E11. अलनादर इंटरचेंज 1 इज आल्सो क्वाइट बिजी. किसे एस इंडस्ट्रियल में ट्रैफिक मिलेगा? इंडस्ट्रियल एरिया 6 इन शारजा इज आल्सो क्वाइट कंजेस्टेड. देन एज यू गेट आउट ऑफ सिटी सेंटर ज़ाइया हेडिंग साउथ ऑल द वे टिल ऑलमोस्ट सिटी सेंटर मिर्ज़ा, इफ यू विल फाइंड स्लो मूविंग ट्रैफिक.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद इतना गाना वाना गाने के बाद भी अदिति अगर नहीं हंस रही है, नहीं मुस्कुरा रही है, we've got the perfect solution. The big check-in is back.
1: The big breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Picture this, आपका पासपोर्ट एंड अ फ्री टिकट टू एन अमेजिंग डेस्टिनेशन. मतलब इफ यू डोंट बिलीव अस, टॉक टू एनीबडी हूज बीन ऑन दीज ट्रिप्स विद अस, द बिग चेक इन, दे विल टेल यू इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग अ ग्रेट टाइम, द टाइम ऑफ योर लाइफ, इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक लास्टिंग फ्रेंडशिप्स. हाँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं मेरे, यू नो, इट्स फॉर लाइफ काइंड ऑफ अ फीलिंग दैट यू गेट. प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स डैन्यू प्रॉपर्टीज, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, एसोसिएट स्पॉन्सर फोर्ड, कमिंग सून ओनली ऑन बिग 106.2. लेकिन हाँ, डेस्टिनेशन कौन सी है, दिस इज अ बिट ऑफ अ सस्पेंस, आपको गेस करना है. हियर्स अ हिंट, थिंक फ्रेश प्रेजल्स, डिलिशियस बेकरी ट्रीट्स एंड रिच चॉकलेट केक. इन फैक्ट जो चॉकलेट केक है, इट्स नेम्ड आफ्टर अ फॉरेस्ट दैट यूल फाइंड इन दिस पर्टिकुलर कंट्री. कौन सी कंट्री हो सकती है, इफ यू वांट टू टेक अ गेस देन यू कैन व्हाट्सएप 0543091062. कमिंग वेरी सून के कहां जा रहे हैं इस पर से पर्दाफाश, बिग चेक इन,
1: बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae.

0: एपिटिलॉन श्रेया घोषाल का ये कोलैब, कौन किसको ज्यादा इंस्पायर कर रहा है पता नहीं चल रहा, ठीक वैसे ही जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम का कोलैब।
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: नहीं मतलब ऑफिशियल कोई कोलैब नहीं है इन लोग के बीच में, there's always controversy, there's always some sort of animosity between YouTube and Instagram, लेकिन एक दूसरे को इंस्पायर तो करते हैं यार, ये कंपटीशन भी होता है एंड कंपटीशन आल्सो काइंड ऑफ इंस्पायर्स देम। जैसे इंस्टाग्राम की दुनिया में रोज कुछ ना कुछ ऑलमोस्ट होता रहता है, वैसे अब YouTube भी कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ कर रहा है। नाउ द लेटेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ यूट्यूब इज दैट एक बड़ा चेंज उन्होंने किया, चेंज दैट दे मेड इन ईयर्स एंड दिस गोना इम्पैक्ट एवरीवन्स व्यूज। अब क्या है ना कि एक मिनिमम प्लेबैक रिक्वायरमेंट का एक रूल था पहले फॉर पब्लिक व्यूज, इससे पहले कि कोई व्यू में क्वालिफाई हो देयर वाज अ मिनिमम प्लेबैक रिक्वायरमेंट कि इतने मिनट्स के लिए तो डेफिनेटली वीडियो को देखा तब जाकर आपका जो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है उसको एक व्यू मिलेगा। अ व्यू विल काउंट नाउ द मोमेंट योर वीडियो स्टार्ट्स प्लेइंग। ये 24th of August यानी कि आज से कुछ 6 दिन के बाद ही होने वाला है। सो द मोमेंट समबडी स्टार्ट्स प्लेइंग योर वीडियो इट क्वालिफाइज एज अ व्यू, विच मीन्स कि पहला फ्रेम जैसे वो प्ले होना शुरू होता है इट इज नाउ गोना बी काउंटेड एज अ व्यू। सो ग्लोबली अक्रॉस ऑल वीडियो फॉर्मेट्स ये होने वाला है। द अर्ली रिएक्शंस आर बिट मिक्स्ड, जैसे आवारापन 2 को मिल रहे हैं मिक्स्ड रिएक्शंस। अगर आप इमरान हाशमी के फैन हैं तो आप कह रहे हैं हाँ, नहीं है तो आप कह रहे हैं बिल्कुल भी ना। वैसे ही इसके रिएक्शंस भी हैं, सम क्रिएटर्स आर सेइंग कि नहीं नहीं यार ये तो मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ब्रैगिंग वाला व्यू, ये कोई इस व्यू का कोई मतलब नहीं है। एंड बाकी जो न्यू क्रिएटर्स उन्होंने कहा कि भाई ये तो अच्छी बात है क्योंकि देव ऑल्सो काइंड ऑफ डबल्ड द रिक्वायरमेंट फॉर मोनेटाइजेशन। पता है ना आपको जो आपका जो चैनल है इफ इट्स अ न्यू वन तो मोनेटाइजेशन के लिए भी अब डबल मेहनत आपको करनी पड़ेगी, डबल द नंबर ऑफ व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स वगैरह आपको चाहिए, वॉच आवर्स वगैरह, तो उसमें दीज आर गोना प्ले अ वाइटल रोल इज व्हाट दे आर सेइंग। सो या आई एम गोना पुट अप अ पोल क्वेश्चन अबाउट दिस ऑन आवर इंस्टा 106.2 बिग एफएम, दैट इज आवर इंस्टा हैंडल। What side of the fence are you? You can tell us out there. For now, here's the Sher Baloch version of Didi from Durandar the Revenge. This is The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: And do not forget the Ford Back to School 2026 campaign by Altair Motors. Campaign runs shuru ho gaya 14th of August se till the 27th of September this year. You can buy now and pay agle saal in 2027. Down payment on Altair Motors, 1 year free insurance, 5 saal ya phir 100,000 kilometers ki service and warranty. Offers available on selected Ford models. A great opportunity for families to get ready for the new school year with attractive Ford offers.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
2: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फ्रॉम हाई स्पीड चेजेस डाउन द ऑटोबान टू ड्रामेटिक डॉन 2 स्टाइल व्यूज, We're taking you straight into a blockbuster adventure. We are keeping it a top secret, so start guessing. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor, Danu Properties. Coming soon on Big 106.2. Namaste.
3: Hola.
2: Assalamualaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
4: Did you know? Now, just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
2: The Big Breakfast, brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
6: कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड, हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन, आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
2: बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग।

0: ये जो वक्त है ना यार, जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 10:09।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: दीवाने की दीवानियत आजकल AI के चलते ना, ये टेक्नोलॉजी की भी दीवानियत हो गई है. पता नहीं रोज कुछ ना कुछ ऐप आता है, सम न्यू वेबसाइट और दी अदर, एंड ऑनेस्टली 99% आर ट्रैश, बट वन और टू ऑफ देम ऐसे होते हैं जिसके बारे में सोच के लगता है कि यार ये आइडिया बढ़िया है.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: फॉर एग्जांपल दिस इंडियन वेबसाइट, या इसके बारे में सुनकर आपको लगेगा यार ये पहले क्यों नहीं हुआ, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया. देयर इज अ न्यू वेबसाइट दैट लेट्स इंडियंस अनोनिमसली रिपोर्ट हाउ मच ब्राइब दे पेड. कितनी घूस आपने खिलाई ये आप इस वेबसाइट पे दर्ज कर सकते हैं. यू कैन काइंड ऑफ जस्ट put it in out there. It's called bribes.fyi. Yeah. So, for your information, basically, bribes.fyi. I love the name as well. Bribes.fyi. It's a platform where you can anonymously report details of bribe. कि अगर किसी ने कोई कर्मचारी है वगैरह जिसने आपसे घूस रिश्वत लेने को कहा, और अगर आपने दे दी रिश्वत और आपने कितनी पे की है रिश्वत, जो रोल था उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, द अमाउंट, द डिपार्टमेंट इन्वॉल्व, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनोनिमसली. बिकॉज ऑफकोर्स एक डर रहता है कि हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो कुछ हो जाएगा एक्सेट्रा, तो देन इस डर के मारे लोग आवाज़ नहीं उठाते, फिर वो ब्राइबरी चलती रहती है. सो टू रेमेडी दैट, दिस वेबसाइट वेरी सिंपली It's India's first crowdsourced bribe registry that's completely anonymous. Yeah, crowdsourced bribe registry that's completely anonymous and permanently public. How is that as an idea? I think it's a total tabahi idea. Aise idea aur aane chahiye. From the film Toxic, here's a tabahi coming up in just a while. This is The Big Breakfast with me, Sid. 106.2

0: 8:10:22 ऑन द क्लॉक. एंड इन केस आप सोच रहे हैं यार कार्तिक आर्यन आजकल क्या कर रहा है लाइफ में, मैं बताता हूँ. दो दो बड़ी बड़ी चीजें आ रही हैं.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: रिमेंबर शिमित अमीन, या सेम गाय डायरेक्टेड चक दे इंडिया. अगर आप सोच रहे हैं यार कहाँ गायब हो गए चक दे इंडिया बनाने के बाद, हाँ वो गायब हो गए थे, बट इज गोन कम बैक. एंड कार्तिक आर्यन इज गोन प्ले अ पायलट इन अ फिल्म कॉल्ड कैप्टन इंडिया, जो शिमित अमीन डायरेक्ट करने वाले. लार्ज स्केल एविएशन रेस्क्यू ड्रामा है. एंड या इस दैट्स वन बिग फिल्म दैट एवरीबडी इज काइंड ऑफ वेटिंग फॉर. चक दे इंडिया, रॉकेट सिंह जैसी फिल्म बनाने के बाद ही इज नॉट डन एनी बिग मूवी. सो कार्तिक आर्यन इज गोइंग टू बी इन दैट वन. द अदर न्यूज इज दैट 17th August, यानी यस्टरडे, ही स्टार्टेड हिज ओन स्टूडियोज कॉल्ड डोपामीन स्टूडियोज. एंड द बैनर्स फर्स्ट प्रोजेक्ट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फिल्म फ्रॉम कैप्टन इंडिया. इट्स कॉल्ड, इट्स गोना हैव कबीर खान डायरेक्टिंग इट. चंदू चैंपियन के बाद कबीर खान, कार्तिक आर्यन गेटिंग टुगेदर. एंड कार्तिक इज एक्चुअली गोना बी प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म एज वेल. एंड रिपोर्ट्स के हिसाब से ये कन्फर्म नहीं है. He's going to be playing a kickboxing coach. Yeah, kickboxing coach who helps guide a young Kashmiri girl. So, काफी interesting दो projects हैं in the world of Kartik Aryan.
2: राम चाहे लीला, चाहे लीला, चाहे राम, इन दोनों के love में दुनिया का.
0: This song's coming up in just a while. And SLB Sanjay Leela Bhansali की ये फिल्म थी. He was the assistant of Vidhu Vinod Chopra, जिनकी 1942 a love story restored in 8K out in cinema halls.
1: Big. Ajman, a fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward plus exclusive member discounts. Safir Market, more choices, more savings, more reasons to shop. The Big Thrill with Mansi. Weekdays 5 p.m. to 9 p.m. on Big 106.2, brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit. Fasten your seat belts, kyunki डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. From high speed chases down the autobahn to dramatic Dawn 2 style views, we're taking you straight into a blockbuster adventure. We are keeping it a top secret, so start guessing. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor, Danu Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsor, Ford. Coming soon on Big 106.2. Listen to her every day.
3: Mugembo! Khush hua!
4: Teen citrus fruits.
5: Lemon.
4: Or? तीन ऐसी चीजें जो दही से बनती है. दही, दही से बनती है.
5: पनीर.
4: दही से पनीर बनता है. दही से पनीर बनता है.
5: पनीर.
4: एक सेकेंड, हेलो. घी और पनीर दही से बनता है. मैं इस बात पे ना अगर मैं फाइन कर सकती आपको तो मैं करती. आखिरी बार आप किचन में कब गए थे?
5: अभी गया था.
4: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तीन मेकअप आइटम्स.
5: मस्कारा, लिपस्टिक, आईलैशेस.
4: ये आईलैशेस.
5: But eyelashes, that eyelash, what you put on the eyelash.
4: ये तो आपको पता है, मतलब के रहते हैं आप लड़कियों के आसपास. तभी ये फाइन लग रहे हैं. रेड लाइट जंप किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं हो गया था? तीन चीजें आपको जो अपने जॉब के बारे में बिल्कुल ना पसंद है.
5: माय ऑफिस चेयर, माय लैपटॉप एंड लंच आवर. लंच ब्रेक.
4: लंच ब्रेक क्यों नहीं पसंद है? कम है कि
5: कम होता है ना? कम है, कम है.
4: कितने कितने घंटों का चाहिए आपको? 8 में से मेरे हिसाब से 5 घंटे लंच ब्रेक होना चाहिए.
1: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
6: Hey, jaldi hata, tera khatana. Jal hata. Hey, jaldi.
1: traffic brought to you by selfdrive.ae.
0: It is 10:27 on the clock and let's take a look sabse pehle at Altaun Street. Yahan par aaj kafi zyada traffic and this is actually heading north. Right in parallel to E11, यहाँ पर आपको traffic मिलेगा कुछ 4 से 5 minute का. Then there's E11, 311 heading south going towards Dubai from Sharjah. Both these arteries expect the usual 6 to 8 minutes का delay. In fact, 311 पर all the way from city center Zaya till the other city center Mirdif, you'll find a slow moving traffic as usual. 66 पर you'll find a bit of congestion going towards Al Jadaf and Business Bay Metro Station पर भी काफी congestion in the roads. Leading up there, the good news is that 611 pe jo traffic tha, ab wo ho chuka hai clear.
1: Sia, self-drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: He is one of the biggest, most well-known directors in Bollywood. Sanjay Leela Bhansali ki film ka ye gana Ram Chahe Leela. Difficult to imagine that he was an assistant at one point, 1942, a love story. Vidhu Vinod Chopra ki ye assistant the unka kaam tha. जो मनीषा कोइराला की एंट्री सीन थी उसमें कौवे चाहिए थे तो ही स्पेंड द नाइट डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्रेड ऑन द टेरेस ऑफ अ बिल्डिंग कि सुबह जब कौवे आएंगे तो विदु विनोद चोपड़ा विल गेट द परफेक्ट शॉट. व्हाई आर वी सडनली टॉकिंग अबाउट 1942 अ लव स्टोरी एंड योर सोशल मीडिया फीड इज ऑल्सो गोइंग टू बी फुल ऑफ इंटरव्यूज विदु विनोद चोपड़ा अनिल कपूर जैकी श्रॉफ जावेद अख्तर. द फैक्ट इज दैट 21 तारीख को इट्स कमिंग आउट सिनेमा हॉल्स में रिस्टोर्ड वर्जन.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: इटली में जाकर दो साल लगाकर कुछ 9.5 करोड़ रुपए खर्च करके विदु विनोद चोपड़ा ने 1942 लव स्टोरी को रीमास्टर किया है उसके हर एक फ्रेम को. एंड देयर वर सम पता नहीं 2.5 लाख का फ्रेम्स समथिंग लाइक दैट. उस सारे फ्रेम्स को रिक्रिएट किया रीमास्टर किया है उसको अच्छा किया बेहतर किया है. एंड इट्स गोना बी अ गुड व्यूइंग एक्सपीरियंस इन द बिग ऑन द बिग स्क्रीन. आई मीन बेटर भी दो साल लगा दिए इसमें. सो यार बहुत मेहनत की. आई थिंक विदु विनोद चोपड़ा ऑल्सो नीड्स टू हेड आउट फॉर द लेटेस्ट सीजन ऑफ चेक इन विद अस बिकॉज या इट्स नॉट जस्ट अबाउट the relaxing holiday that you need. It's also about creating friends for a lifetime. The Big Check-In is back, the latest season. And yeah, abhi destination kya hai? Ye humne abhi tak reveal nahi kiye. But we are giving you, you know, chances to kind of guess. Agar aap tukke laga sakte hain. Agar aap, if you want to kind of take a wild guess ki hum kahan ja rahe hain, can WhatsApp 0543091062 par your dream holiday is coming very soon. The Big Check-In presenting sponsor Danube Properties, title sponsor Papa John's, associate sponsor Ford, coming soon only on Big 106.2. Clues for you, little hint, you might want to start saying Guten Tag. Guten Tag कहाँ पर जाकर आपको कहना है. That is the country. Country का नाम अगर आपने guess कर लिया, WhatsApp करो 0543091062 पर.
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: 2. The Beat of Bollywood.
1: Flights booked, bags packed. Brain already on holiday. Fast claims, fair prices, real protection. For travel insurance and more, insurancemarket.ie.
2: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. Consult your doctor before taking medicine and pharmaceutical products.
3: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: That kind of traffic जिसके बारे में मुझे अपना ब्राउजर रिफ्रेश करके देखना पड़ेगा, चिपकते नहीं किया वहीं पर, लेकिन हाँ वैसा का वैसा ही ट्रैफिक है 66 पर आज सुबह से. दुबई अलीन रोड की मैं बात कर रहा हूँ, अल जदाफ के आसपास आपको ट्रैफिक मिलेगा. 4 से 5 मिनट की देर यहाँ पर एक्सपेक्ट कीजिए. एंड देयर इज अ बिट ऑफ कंजेशन ऑल्सो D89 पर, एंड दिस इज एज यू गेट टेक दैट एग्जिट फ्रॉम 311 गोइंग टुवर्ड्स दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. यहाँ पर एन इंसिडेंट हैज बीन रिपोर्टेड अनफॉर्चुनेटली, सो बी केयरफुल. 4 से 5 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पर बताएंगे आप. देन देयर इज द यूजुअल 311 E11 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा, एंड E11 पर अप नॉर्थ अजमान इंडस्ट्रियल 2 से हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स E88 यू विल फाइंड 3 से 4 मिनट की देर.
3: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: गफूर मियां की खिदमत में सलाम पेश करते हुए इट्स टाइम फॉर मी टू हेड आउट ऑफ द स्टूडियोज, इट्स 10:49। लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दूं, शोज ब्रॉट यू बाय हेना स्पीडी इजी हेयर कलर।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: कब यू ग्रे हेयर इन जस्ट 5 मिनट्स, 5 मिनटों में विद द हेना स्पीडी इजी हेयर कलर दैट्स मेड इन इटली। इट्स अमोनिया फ्री फॉर्मूला एनरिच्ड विद हेना एक्सट्रैक्ट एंड आर्गन ऑयल, गिव्स यू वाइब्रेंट नेचुरल लुकिंग कलर, वर्क्स ब्यूटिफुली इवन ऑन थिक हेयर, डिलीवरिंग इजी इवन एप्लीकेशन। द इजी कॉम एप्लीकेटर मेक्स कलरिंग एज सिंपल एज कॉम्बिंग योर हेयर। Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy. On that colorful note, I'm going to be taking your leave. Milunga aapse kal subah sharp at 7 a.m. This is the perfect way to start your day. It's called The Big Breakfast with me, Sid. In the meanwhile, do not forget to follow us on socials. Agar nahi kar rahe to kya kar rahe ho yaar, ab kar lo, chalo koi baat nahi. 106.2 Big FM, that is our handle on Instagram. I'm Sid Seth, SIDSETH. Till tomorrow then, enjoy the rest of your Tuesday. Bye bye.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: जब चाहिए effective relief from indigestion, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको relief naturally. इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
1: बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग।

0: to play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलखूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लौटाएगा?
3: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पाँच?
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना।
1: रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कने अपने कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
2: बिग 106.2

0: play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: आपकी जीत डाबर शिलाजीत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
0: बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग.

0: crossings to Britain. South Korea's President Lee Jae-myung has called for stronger independent defence capabilities as part of efforts to reduce the military's reliance on the United States. He also called for faster progress on a nuclear-powered submarine programme. The Chinese government has been censoring social media posts about the former Premier Zhu Rongji as his funeral and cremation take place in Beijing. Tributes online to his economic reforms have prompted some criticism of President Xi Jinping's government. Brazil's president has welcomed the discovery of oil reserves near the Amazon coast, despite opposition to drilling in the area from environmentalists. And world football's governing body, FIFA, has sacked its chief operating officer, Kevin Lamour. 3 weeks ago, he strongly criticised the organisation's president, Gianni Infantino, for his now abandoned plan to sell stakes in the World Cup. BBC News.
1: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant colour, natural finish. All in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour, made in Italy. Big 106.2.
2: Don't be sorry, Tanya. Haath mein pom-pom leke ladko ke liye chillana mera style nahi hai. Wo mere liye chillaye, seethi bajaye. That's not my thing.
1: She's bubbly, bringing fresh energy and a whole lot of flavor. The Big Mix with Avni on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: बिग 106.2 पर मैं हूँ अवनी, आपके साथ बिग मिक्स 1 टू 5 शुरू हो चुका है। कल मेरा डे 1 था, आज डे 2 है, लेकिन मैं हर दिन नहीं बताने वाली हूँ यार कि मेरा कौन सा दिन चल रहा है। आई एम सेइंग दैट क्योंकि आज ट्यूसडे है, लेकिन तब भी कुछ लोगों को ये मंडे वाइब दे रहा है, लेकिन वो मंडे वाइब हटाने के लिए मैं आ चुकी हूँ। आज नेशनल कपल्स डे है एंड विद दैट गुलजार साहब का बर्थडे। आप देख रहे हो यार, आप देख रहे हो कितने सही दिन पर ये दो दिन आए हैं। वेल हैविंग सेड दैट, अपनी लव लाइफ की मैं बात तो नहीं करूँगी। बिल्कुल एकदम यू नो परफेक्ट मैच होता है सॉन्ग कमिंग अप योर वे आफ्टर दिस। टिल देन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 1:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 40 degrees out there, लेकिन feels like 50. Humidity भी काफी ज़्यादा है आज. It's around 55%. The lowest it'll touch is 33 degrees. कब भाई? पर शाम को.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA, and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. There.

0: insured Dubai families since 1995. The kids we cover then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. The Big Mix शो का नाम है एंड आज नेशनल कपल्स डे है. एंड जितनी मर्जी बात कर लो यार, आप इग्नोर नहीं कर सकते कपल्स को. यू लव देम, यू हेट देम, बट यू कांट इग्नोर देम. इतने सारे जो हो चुके हैं. था वक्त यार, मेरा भी कभी था, मेरा भी.
3: तू कंटी बिग बैन थी पूरा लंदन ठुमकदा.
2: इसे मेरी एज मत गेस कर देना, एज इज जस्ट अ नंबर. आई एम टेलिंग यू, फिलहाल हर किसी की लव लाइफ कुछ और चल रही है. यहाँ से मैं यहाँ तक कब पहुँची यार. वेल नेशनल कपल्स डे के मौके पर यू टेल मी कॉल करके 800-1062 पर के वन थिंग यू लव एंड वन थिंग यू हेट अबाउट कपल्स. 800-1062 इज अ नंबर टू लाइक. कीप लिसनिंग टू बिग 106.2.

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood. Fasten your seat belts, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। From high speed chases down the Autobahn to dramatic Dawn 2 style views, we're taking you straight into a blockbuster adventure. We are keeping it a top secret, so start guessing. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor Daniel Properties, coming soon on Big 106.2. Listen to her every day.
2: Mugambo, khush hua.
3: Jamming with the karaoke and now Chitransh, जिन्होंने इतने शर्माते शर्माते मुझे फोन किया है। Hi Chitransh. तो चलो अब हम चित्रांश की आवाज में सुनेंगे ये गाना। हाँ जी। आपकी आशिकी नेटवर्क के बाहर जा रही है सर, आपकी आशिकी नेटवर्क के बाहर जा रही है।

0: तेरे चेहरे पे अपनी, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा।
1: वेरी नाइस। कैन आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन? आई विल स्टिल आस्क। वो छोड़ के गई थी ना चित्रांश, वो छोड़ के गई थी ना? मैं समझ गई। गाया आपने बहुत कमाल है, मतलब जैसे एकदम आप चले गए थे ना उस जोन में। मैं समझ गई थी कि जिसके लिए ये गाने डेडिकेट हुए थे वो आज कल किसी और को डेडिकेशन दे रही है अपनी।
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: Okay, Dubai, let's check your roads before you check your patience. I'm seeing Sharjah Sagar aa rahe ho. E11 is seeing slow. Stop and go traffic around Khan, Mamzar and Itihad Road. E311 Sheikh Mohammed bin Zayed Road is also seeing pressure around Sharjah side and Mohizna. Agar aap interchanges par ho, till then keep listening Big 106.2.
2: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
4: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे,
5: और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
2: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Kia. Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी, आपके साथ, और मेरे साथ है कौन? हाय
2: हाय, मैं डिंपल बोल रही हूँ.
1: हाय डिंपल, कैसे हो आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
1: मैं भी ठीक हूँ, पर आई यू कपल? पहले ये बताओ, डू यू हैव अ पार्टनर?
2: वेट, आई हैव अ पार्टनर इन क्राइम, सो विल अ कपल ऑफ इडियट्स डज दैट काउंट?
1: यस. बताइए वन थिंग यू लव अबाउट कपल्स एंड वन थिंग यू हेट अबाउट देम.
2: I'm a true romantic at heart, so for me, couples, like, I look at them, I'm like, that's all.
1: So you just go, oh, okay, yaar, kya ho gaya? Such a cute moment. Achha, one, koi aisa cute moment batao.
2: There is this one elderly couple meri building ke niche, wo log har roz subah walk ke liye jaate hain. Hmm. And I think that is so cute, they're always holding hands. I don't have a partner.
1: Oh, achha, ye aap meri category mein ho.
2: Exactly. I'm with my goddaughter, Nishka.
3: Hmm. Hi.
1: Hi. Hello.
2: We had a couple of videos I was talking about.
1: Oh my God, that is so sweet. But I love your energy. आप manifest करो ऐसे cute moments. I think so. यही करना चाहिए मुझे भी यार. तभी कुछ हो पाएगा love life का, नहीं?
2: Of course.
1: ठीक है. Thank you so much, Dimple. Great talking to you and just keep calling. 800-1062 is the number. You tell me one thing you love and one thing you hate about couples. 800-1062.

0: 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Taqat ka tarkab with Dabur Shilajit.
3: बिजी दिन हो या फिर टफ शेड्यूल, अपनी एनर्जी और एक्टिव लाइफस्टाइल का ध्यान रखना जरूरी है। डाबर शिलाजीत के साथ रहिए रेडी फॉर योर एवरीडे चैलेंजेस।
2: ताकत का तड़का विद डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।

0: बड़े बनाने तो नहीं आते मुझे,
1: और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
2: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी, आपके साथ एंड मेरे साथ है अमरीन। हाय अमरीन।
2: हाय, हाउ आर यू?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
2: आई एम वेरी गुड।
1: अच्छा, बिफोर यू आंसर माय क्वेश्चन, डू यू हैव अ पार्टनर?
2: यस यस।
1: ओके,
2: आई एम अ पार्टनर।
1: हैप्पी हैप्पी नेशनल कपल्स डे, देन उनको भी विश कर देना।
2: सेम टू यू।
1: नहीं, मुझे सेम टू यू
2: मत बोलो, डेफिनेटली
1: चलेगा नहीं मेरा सेम टू यू।
2: ओ सॉरी,
1: इट्स ओके। अच्छा, वन थिंग यू लव एंड वन थिंग यू
2: या The thing I love being a partner is I get a lot of care from my partner. Whenever I fall sick or whenever I want to meet my parents, he's always there to support.
1: That is so sweet.
2: Always. In many things, not only two things. Everyday life, I get a lot of care from him.
1: So on a scale of 1 to 100, how much you will urge people to be in a couple, like to have a partner?
2: 100 on 100,
1: done. I'll work on it. Well, that was Amreen. You tell me 800-1062 per call karke one thing you love and one thing you hate about couples. 800-1062 is the number. Till then, keep listening. Big 106.2.

0: gonna buy back Kabir Khan and Kartik Aaryan. What is it about? We'll just tell you in a bit.
1: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है. देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे.
0: 2:02 2:02 हो चुके हैं.
2: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मैं बात करने वाली हूँ लंच बॉक्सेस के बारे में. टाइम आ चुका है बैक टू स्कूल सीजन का. ऑफकोर्स 31st से वो सीजन ऑफिशियली शुरू होने वाला है. अपेरेंटली रियल एग्जाम भाई किड्स के लिए नहीं है, इट्स अबाउट द पेरेंट्स के भाई लंच बॉक्स में क्या भेजा जाए. एंड स्पेशली फॉर द मम्स, उनको 4:30 उठना पड़ता है सुबह सुबह टू प्रिपेयर लंच. कॉन्स्टेंटली वरिंग अबाउट कि भाई ऐसा क्या भेजें जो प्रोटीन पैक्ड हो, जिसको यू नो किड्स को एलर्जी ना हो जिनसे. एंड ऑफ कोर्स ग्रोसरीज के प्राइसेस भी इतने बढ़ चुके हैं कि लंच बॉक्स बनाए, मतलब अच्छा बड़ा बनाए और ख़त्म भी होके वापस आ जाए उसके बाद. लेकिन इतना मेहनत करने के बाद जब बच्चे खाना नहीं खाते हैं ना, मैं बता रही हूँ, मुझे बोल के ही गुस्सा आ गया यार. पर क्या कर सकते हैं जब पैक्ड लंच बॉक्स पैक्ड घर वापस आता है. दो टुकड़े खा लेते यार. Well, you tell me, call करके 800-1062 पर कि आप अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा लंच ऐसा क्या बनाते हो जो यू नो फुल 100% खाली लंच बॉक्स वापस आता है. 800-1062 is the number. Till then, keep listening to Big 106.2.

वो कड़े बनाने से नहीं आते मुझे। और मैं ना

0: Sia. Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: The Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ and it's time for your dream holiday. It's coming very very very soon. The big check-in की बात कर रही हूँ मैं. Presenting sponsor Daniel Properties, title sponsor Papa John's, associate sponsor for coming soon. आपको बस इतना हल्का सा hint दे देती हूँ. You might wanna start saying, you know, good and tag. ट्रिप के नाम सुनते ही भाई हम झूमने लगते हैं.
2: उड़ती उड़ती अखियों के लड़ गए पैंचे लड़ गए वे गीत लगा के
1: Very soon, the big check-in. Till then, you keep listening to Big 106.2.

0: 106.2, the beat of Bollywood. Fasten your seat belts, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. From high speed chases down the autobahn to dramatic Dawn 2 style views, we're taking you straight into a blockbuster adventure. We are keeping it a top secret, so start guessing. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor, Daniel Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsor, Ford. Coming soon on Big 106.2.
1: School's starting soon and we need a car.
2: Books, uniforms, everything.
1: Don't worry, I found the best back-to-school offer on Self-Drive. Self-Drive cars from just 1,099 dirhams per month, flat rate.
3: And what if we need it for a short while?
1: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with Self-Drive from 1,099 dirhams per month, flat rate. Self-Drive, get ready, get driving.
4: आपकी जीत, डाबर शिलाजीत, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
0: बिग ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae.
5: लेटेस्ट वेरीफाइड ट्रैफिक पिक्चर जो है वो दिखा रहे हैं भाई दुबई शारजा रोड एज द मेन ट्रबल स्पॉट, E11 एंड E311, ऑल्सो अराउंड अल खान, अल ममजार एंड अल इतिहाद रोड भी आपको स्लो ट्रैफिक मिल सकता है. E311 इज ऑल्सो लिटिल कंजेस्टेड. इफ पॉसिबल आप E611 एमिरेट्स रोड भी ले सकते हो एज एन ऑल्टरनेट रूट. टिल देन कीप लिसनिंग बिग 106.2.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. Big 106.2. Big 106.2.

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: अब बिल्कुल भी झूमना नहीं पड़ेगा वंस यू लैंड दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 3।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: द बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनि आपके साथ। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का टर्मिनल 3 जो है वहाँ पर एक डेडिकेटेड एयर कंडीशन वेटिंग लॉन्च फॉर ऊबर एंड करीम पैसेंजर्स आ चुका है। सो बेसिकली अब आपको करना क्या है, अब से यू हैव टू लैंड, कलेक्ट योर बैग्स, एस्केप दुबई हीट, अपना फोन चार्ज करो, वेट करो कंफर्टेबली अपनी राइड के लिए। लॉन्च में सिटिंग एरिया है, आपके लगेज के लिए भी स्पेस है, वर्क टेबल्स भी हैं, चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं, USB-C, USB-A, एयर प्योरीफायर्स। सो बेसिकली आपको बहुत ही कंफर्टेबली वेट करना है। मैं तो बस बता रही हूँ क्योंकि मैं वेट करवाती बहुत हूँ, मैं हर जगह लेट जाती हूँ पर मैं वेट करवाती बहुत हूँ। बिग 106.2 इट इज, स्टे ट्यून्ड।

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: Commission's president, Gianni Infantino, for his now abandoned plan to sell stakes in the World Cup. BBC News.
1: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant colour, natural finish, all in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour, made in Italy. Big 106.2.
2: Chubby, sorry, Tanya. Haath mein pom-pom leke ladko ke liye chillana, mera style nahi hai. Wo mere liye chillaye, seethi bajaye. That's not my thing.
1: She's bubbly, bringing fresh energy and a whole lot of flavour. The Big Mix with Avni. On Big 106.2, brought to you by InsuranceMarket.ae.
3: बिग 106.2 पे मैं हूँ अपनी आपके साथ एंड दिस आवर वी गोना टॉक अबाउट कार्तिक आर्यन एंड उनका जो डू वापस आने वाला है कबीर खान के साथ द लेटेस्ट वन वाज चंदू चैंपियन. आई एब्सोल्युटली लव दैट फिल्म. रियली रियली एक्साइटेड अबाउट दिस नेक्स्ट प्रोजेक्ट. आपको भी बहुत पसंद आएगा. स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन बिग 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: It's past 3 already and मुझे बहुत भूख लग गई है। It's time for me to open my lunch box still and you keep listening Big 106.2
1: Big 106.2 The beat of Bollywood

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ. भाई कार्तिक आर्यन फेवरेट हो गए थे मेरे जब से मैंने उनकी चंदू चैंपियन फिल्म देखी थी. व्हाट एन एक्टर. उस फिल्म के लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला, लेकिन उसके बाद अब वो इस फिल्म के साथ आने वाले हैं. फिल्म का नाम होने वाला है कैप्टन इंडिया. इट्स गोइंग टू बी एन एविएशन थ्रिलर डायरेक्टेड बाय श्रीमत अमीन. अब ये जो फिल्म मेकर हैं, आपने इनको देखा होगा, सुना होगा, डायरेक्ट उन्होंने करी थी चक दे इंडिया भी यार. What an iconic film. And just not that, अगर आप देखो कि यार इतनी iconic, इतनी बड़ी फिल्म बनाई है, लेकिन इतनी चटपटी फिल्म भी बनाई थी यार. Well, अगर आपने ये फिल्में नहीं देखी हैं, फिर भी आपको ये वाली देखनी ज़रूर बनती है जिसका नाम है कैप्टन इंडिया. अगले महीने अभी फिलहाल शुरू होने वाली है इनकी शूटिंग, लेकिन कार्तिक आर्यन का सिर्फ एक ये अपडेट नहीं है. देयर इज वन मोर एंड आई एम रियली रियली रियली एक्साइटेड अबाउट दिस डुओ. व्हाट इज इट अबाउट, आई विल जस्ट टेल यू इन अ बिट. टिल देन कीप लिसनिंग बिग 106.2 पर. नेक्स्ट से नेक्स्ट सॉन्ग आने वाला है. मुझे करेले पसंद है, पर मैं बातें मीठी करती हूँ. बिग 106.2 इट इज. स्टे ट्यून्ड.

0: The Big Thrill with Mansi. Weekdays 5pm to 9pm on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit. Fasten your seatbelts. Kyunki डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. From high speed chases down the autobahn to dramatic Dawn 2 style views, we're taking you straight into a blockbuster adventure. We are keeping it a top secret, so start guessing. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor, Daniel Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsor, Ford. Coming soon on Big 106.2. Listen to her every day.
1: Mugembo, khush hua.
2: Jamming with the karaoke and now Chitransh, जिन्होंने इतने शर्माते शर्माते मुझे फोन किया है. Hi Chitransh. तो चलो अब हम Chitransh की आवाज में सुनेंगे ये गाना. हाँ जी. आपकी आश की नेटवर्क के बाहर जा रही है सर. आपकी आश की नेटवर्क के बाहर जा रही है.

0: तेरे
1: चेहरे पे अपनी, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा।
0: वेरी नाइस। कैन आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन? आई विल स्टिल आस्क। वो छोड़ के गई थी ना चित्रांश, वो छोड़ के गई थी ना? मैं समझ गई। गाया आपने बहुत कमाल है, मतलब जैसे एकदम आप चले गए थे ना उस जोन में। मैं समझ गई थी कि जिसके लिए ये गाने डेडिकेट हुए थे वो आज कल किसी और को डेडिकेशन दे रही है अपनी।
2: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
3: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे,
4: और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
2: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है,
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
7: 40 डिग्री सेल्सियस फिलहाल जा चुका है टेम्परेचर, लेकिन 33 तक लीस्ट जाने वाला है। बट 40 है, बट व्हाट इट फील्स लाइक यू गोना टेल मी। आप बाहर हो। 800-1062 इज द नंबर, टिल देन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।
2: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big. Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2, Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Mix with Avni on Big 106.2.
1: नेशनल अवार्ड भी मिला उनको इस फिल्म के लिए बट द डुओ इज एक्चुअली बैक द डायरेक्टर कबीर खान एंड द एक्टर कार्तिक आर्यन ऑफ चंदू चैंपियन इज गोना बी बैक विद अनदर स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म अनटाइटल्ड है फिलहाल लेकिन चंदू चैंपियन एक बायोपिक थी स्पोर्ट्स ड्रामा थी अगेन ऑन इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर पर और क्योंकि बार्स इतनी हाई हो चुकी हैं उस फिल्म से तो ये वाली जो स्पोर्ट्स ड्रामा आने वाली है एक्सपेक्टेशंस टॉप नॉच जा चुकी हैं चंदू चैंपियन वॉज एक्चुअली अ मूवी अगर आप अपनी लाइफ में होपलेस हो ना आपको इंस्पिरेशन चाहिए यू वॉच दैट फिल्म आपको जो जिंदगी में उखाड़ना होगा ना आप एकदम जूते पहन के उखाड़ने चले जाओगे ऐसी मोटिवेशन आएगी और बोल बोल के मुझे इतनी आ गई कि भाई आज मैं अपना जिम बिल्कुल मिस नहीं करने वाली हूँ आपको भी मिस नहीं करना है वॉच द फिल्म चंदू चैंपियन ऑन Amazon Prime Video टिल देन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ, कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: जैसे ही मैं भी नाम जपती रहती हूँ, स्क्रॉल करती रहती हूँ कि भाई प्लीज मुझे एक अच्छी रेंटल कार क्यों नहीं मिल रही है, कब मिलेगी, प्लीज मिलवा दो।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। अगर आपको एक रेंटल कार चाहिए, सिया फ्रॉम सेल्फ ड्राइव इज अवेलेबल 24/7 एंड वो 40 लैंग्वेजेस समझती है, इंक्लूडिंग जेंजी की टेक्सटिंग भी, मतलब मेरी बात भी समझ जाएगी, मुझे इतनी बार नाम नहीं जपना पड़ेगा, स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सर्च, चूज एंड बुक योर परफेक्ट कार इन जस्ट फ्यू मिनट्स। Try Sia today at selfdrive.ae. Till then, keep listening to Big 106.2.
2: Baby! Yeah! Baby! Control! Wait a minute!
3: Uh-oh! Salaam le jata hua, udan khatola, aur beam bajati hui,

0: के
1: मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
2: बिग 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 4:07।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 पर।
1: कहते हैं बर्फ पड़ने वाली है,
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: बिग 106.2 इट इज एंड 40 डिग्रीज था, लेकिन 39 डिग्री सेल्सियस फिलहाल टेम्परेचर हो चुका है, 33 हो चुका है, जो लोएस्ट था ना आज का वो निकल चुका है, 37 इट्स अब रात तक चलेगा। लेट्स सी, यू कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big. Big 106.2.

0: कितनी बार दिलजीत दोसांझ को मैं ये बोलूं कि वो मान जाए, like how many times is like too many times, you tell me please yaar.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ, and there's one top notch news coming up your way this Tuesday के लिए. बहुत ही अच्छी थी भाई, अगर आपका बोरियत से भरा दिन निकल रहा है, ZNMD 2 आने वाला है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल आने वाला है 15 साल बाद. Zoya Akhtar also has confirmed, of course जो सीक्वल होने वाला है, जो कहानी खत्म जहाँ हुई थी वहीं से आगे बढ़ेगी, but they have to get to a point जहाँ पे अभय देओल, फरहान अख्तर एंड ऋतिक रोशन एक और कोई बढ़िया सी जर्नी पर जाए. बिकॉज ऑफ कोर्स ये देखने के बाद हमने जितने अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाए हैं पूरे कितने हुए हैं उनमें से जरा मुझे बताओ. हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप बना के बोल देते हैं भैया सॉरी. छुट्टी नहीं मिली, बच्चों के पेपर हैं, एक्स वाई जी, ओ माई गॉड कितने कितने बहाने मिलते हैं यार आपको. अपने दोस्तों से क्या बहाने मिलते हैं मुझे बताओ. 800-1062 पर कॉल करके या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो 0543091062 पर. टिल देन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2.

0: Bollywood. Make the school run easier in a brand new Ford. Whether in a spacious Explorer, capable Everest, refined Taurus, or versatile Territory, you'll enjoy comfort, confidence, and smart technology every day. For a limited time, get your down payment covered. Enjoy 5 years or 100,000 kilometer service and warranty. 5 years Ford app access and pay nothing until 2027. Ready, set, Ford. Visit your nearest Altair Motors or Premier Motors showroom today. Shop online or call 800-MOTORS. Conditions apply.
1: Fasten your seatbelts. Kyunki Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin hai. From high speed chases down the autobahn to dramatic Dawn 2 style views, we're taking you straight into a blockbuster adventure. We are keeping it a top secret, so start guessing. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor, Danu Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsor, Ford. Coming soon on Big 106.2.
2: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत, डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
3: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ. कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे. हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो.
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: Sia. Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: आपके साथ एंड लॉन्ग ड्राइव की मुझे याद आ गई. एंड अगर आप भी जनरली जाते हो लॉन्ग ड्राइव पर अबू धाबी वाली साइड, तो दिस इज समथिंग यू वांट टू हियर अबाउट. अगस्त 19th, 20th एंड 21st को अबू धाबी अलेन रोड विच हेड टुवर्ड्स अबू धाबी सिटी वो बंद रहने वाली है. E22 टाइम क्लोजर होने वाला है मिडनाइट टू 6 AM. सो इफ यू आर प्लानिंग या फिर आप जनरली ट्रैवल करते हो उस रोड पर, E22 इज अ पार्ट ऑफ योर लेट नाइट रूट इनटू अबू धाबी, तो अपने रूट्स चेक कर लो, ऑल्टरनेट अपना लो. एंड क्योंकि लॉन्ग ड्राइव की अब बात हो ही गई है, मेरा तो मन आ चुका है जब से मैंने वारा पंटू देखी है. ऑल नॉस्टैल्जिया, ओके, फुल नॉस्टैल्जिया इन द फिल्म. मौसम भी अच्छा हो जाता तो लॉन्ग ड्राइव के मजे नहीं आ जाते. कीप लिसनिंग टू बिग 106.2.

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: हाँ जी, द टाइम राइट नाउ 5:03।
1: Bollywood.

0: insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: हाँ जी, जिंदगी में अगर थ्रिल की कमी है तो वो यहाँ पूरी हो जाती है 5 से 9। यस, दिस इज द बिग थ्रिल एंड एवरी इवनिंग 5 से 6 जब आप शिकजात के ट्रैफिक में फंसे होते हो, हम यहाँ पे माहौल बनाते हैं, गाने गाते हैं। दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म फॉर बाथरूम सिंगर्स। सिंगर्स से याद आया, मुझे कल ही पता चला ये जो गाना अभी सुना है मस्कारा, वेदांग रैना की आवाज है, द मेल पार्ट। He sung and he's a fantastic singer, by the way. तो अगर आप भी थोड़े बहुत सुर लगा लेते हैं, 8वां या 9वां लगी जाता है, तो यहाँ पे आपका कॉन्सर्ट तैयार है। आवाज आपकी, ऑडियंस मेरी। It's time for the karaoke.
1: Karaoke.
2: अब आज है नेशनल कपल्स डे। अब इफ यूर फेलो 90s किड, यूर मिलेनियल, आई थिंक हर एनिवर्सरी, हर शादी में कपल्स के नाम पर ये गाना 100% प्ले किया जाता है। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर दिस गाना।

अगर आपको याद आ गया, सडनली टेक्स मी टू दोज एरा जहाँ पे कसेट हुआ करते थे शादियों के, और जैसे ही गेस्ट खाना खाने लगते थे बैकग्राउंड में ये गाना बजने लगता था फॉर सम ऑड रीजन. सो इफ यू रिमेम्बर द सॉन्ग, आपको याद आ गया है, देन 800-1062 इज द नंबर टू डायल. वी आर कारियोकिंग राइट हियर ऑन द बिग थ्रिल. मैं हूं मानसी.

0: Big. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
6: आपकी जीत डाबर शिलाजीत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
7: बिग ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।
8: काफी स्लो मूविंग ट्रैफिक इफ यू ऑन द शेख मोहम्मद बिन ज़ायद। फिलहाल इट्स शोइंग अ 45 टू 50 मिनट डिले। मर्डर टू मोहिसना इज पैक। देयर इज आल्सो पैची ट्रैफिक एट द मोमेंट इफ यू टेकिंग हेसे स्ट्रीट। नॉट रियली बैड, अ 15 टू 17 मिनट डिले स्पेशली इफ यू गोइंग टुवर्ड्स मोटर सिटी। थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको मिलने वाला है मरीना से टुवर्ड्स JLT JBR। देयर इज ट्रैफिक इफ यू अराउंड द अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया। हैवी ट्रैफिक है इस वक्त उस पूरे रूट पे। एंड शुरुआत हो गई है शेख ज़ायद के ट्रैफिक की। फिलहाल इट्स शोइंग 22 मिनट डिले। बट मैं हर शाम कहती हूँ ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या।
7: Sia, Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे।
1: 6.2, the beat of Bollywood.

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Good evening, I'm Mansi, and yeah, Big Thrill. While you're heading back home, the best way to relax is karaoke karke. Gaadi mein gaana gaane ka maza hi kuch aur hai. Awaaz aapki, audience meri.
0: Karaoke.
1: Joining us is Mr. Hassan Hamid. Good evening.
2: Good evening.
1: How are you? I am good. Kaisa raha aapka din?
2: बस बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह. और अब तो वापसी का टाइम है लेकिन अभी तक निकले नहीं है. बट
1: आप कपल हो कि सिंगल हो? आज कपल्स डे है.
2: नहीं कपल हूँ.
1: ये तो खुश हो कि नहीं हो? कह रहे हो नहीं कपल हूँ.
2: नहीं नहीं कपल कपल है.
1: अच्छा, तो ये नेशनल कपल सॉन्ग है. अगर आप ने नोटिस करा होगा, 90s में हर एनिवर्सरी हर शादी में गाना प्ले होता था.
2: होता होगा बिल्कुल.
1: अच्छा, नहीं आपको याद नहीं है?
2: मेरी शादी में तो अजीब से हुए थे. आजकल वाले जो है वो कोई थोड़े बहुत पुराने हुए थे, अच्छे जो थे. बाकी तो
1: जब लोग खाना खा रहे थे तो वीडियो पे गाना कौन सा था? क्योंकि वो फेवरेट होता है.
2: वल्लाह आई डोंट रिमेम्बर. वल्लाह
1: दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है. चलो जी, आपको आज कपल्स डे सेलिब्रेट करने का मौका देते हैं. आर यू अ सिंगर? आर यू अ बाथरूम सिंगर?
2: आई एम काइंड ऑफ बाथरूम सिंगर.
1: चलो जी, बाथरूम से बाहर निकालते हैं इनका टैलेंट.
0: Karaoke.
1: All right, Hassan, this is your track. Anji.
2: Jab koi baat bigad jaye, jab koi mushkil pad jaye, tum dena saath mera, oh hum nawa. तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा.
1: ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा गाते.

0: बेटी जब तक हो अपने बस में।
1: वाह हसन, मजा आ गया, मजा आ गया। कितने साल हो गए आपकी शादी को?
0: मेरी शादी को 9 साल हो गए लास्ट मंथ।
1: वेरी नाइस। तो जब बात बिगड़ती है तो कौन मनाता है, सॉरी कौन बोलता है?
0: दोनों ही कर लेते हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ भी काफी अंडरस्टैंडिंग है, मैं भी जो है ना काफी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत स्ट्रिक्ट या कोई बहुत रूल्स वाला, ऐसा नहीं है, मतलब दोनों कर लेते हैं, ऐसे ही चलती है जिंदगी गाड़ी।
1: जब कोई बात बिगड़ जाए तो दोनों को वो जब जरूरी हो सॉरी बोल देना चाहिए। मैरिज एडवाइस, हैप्पीली मैरिड रहने के लिए थैंक्स टू हसन, बट गाना आपने बहुत अच्छा गाया है, ये बहुत कमाल गाना है।
0: गॉड ब्लेस यू,
1: गॉड ब्लेस यू टू, थैंक यू सो मच।
0: बहुत कमाल गाना है, मैंने गाया अच्छा नहीं है बेसिकली, उसके लिरिक्स ही इतने
1: नहीं, नहीं आपने इतनी खूबसूरती से गाया है, मतलब मजा आ गया, मेरा भी दिल कर रहा है कि बस बन जाऊं मैं भी कपल शपल, अब आपने मोटिवेट कर दिया है मुझे। हैव अ ग्रेट इवनिंग हसन, थैंक यू सो मच,
0: बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।
1: दिस इज व्हाट वी डू, वी सिंग, वी कीप आवरसेल्व्स एंटरटेन्ड। अगर आप भी गाना गाने का शौक रखते हैं, गाना आपको भी पसंद है, देन 800-1062 इज द नंबर टू डायल। कारियोकी

When was the last time आपने vacation ली थी? You had a lot of fun without even spending a single dirham. हम आप बैठे बैठे सोच रहे हैं ऐसे कैसे, या तो बंदा छुट्टी पे जाए या बैंक बैलेंस की छुट्टी करे. इमेजिन अ छुट्टी विच इज ऑल एक्सपेंसेस पेड. यू डोंट हैव टू इमेजिन. वी आर बैक विद द बिग चेक इन एंड दिस टाइम इट्स बिगर एंड बेटर देन एवर. जस्ट थिंक ऑफ फ्रेश प्रेट्ज़ल्स, यम बेकरी एंड सम वेरी वेरी कूल कार्स. अगर आपने गेस कर लिया है ये कौन सी डेस्टिनेशन है, देन हेड टू आवर इंस्टाग्राम पेज. वहां जाके कॉमेंट करो कि कहां ले जाने वाले आपको. द बिग चेक इन इज बैक एंड इट इज गिविंग यू अ चांस टू फ्लाई विद टीम बिग वेरी वेरी सून.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Alright, today is 18th of August. Aaj hai Gulzar sahab ka birthday. I absolutely love him. One person that I really wish I get a chance to interview. And aaj hai National Couples Day. अब गुलजार साहब जो है वो कुछ भी लिखते हैं वो रोमांस में बदल जाता है, बट जिंदगी में मुझे उनकी बहुत सारी शेर व शायरी मिली, बट ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जिसने मुझे सिंगल से कपल बनाया. तो हैप्पी नेशनल कपल्स डे, और आई शुड कॉल इट रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट आई एम अग्रेसिवली सिंगल. सी, इफ यूर अ कपल राइट नाउ इज मैडली इन लव, कंग्रेचुलेशंस, एंजॉय होल्डिंग योर हैंड्स 45 डिग्री की गर्मी में, एंड 40 मिनट लो हर शाम डिसाइड करने के लिए कि क्या खाएं, क्या ऑर्डर करें, एंड ऑफकोर्स लड़ाई करो ऑन AC का टेम्परेचर. मीनवाइल मैं अपनी जिंदगी कमाल जी रही हूँ. अगर आप भी सिंगल हो तो यू विल अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू शेयर योर पिज्जा विद एनीवन, यू डोंट हैव टू आस्क एनीवन कि आज मैक्सिकन खाएं या फिर इटालियन मंगवाएं. AC का टेम्परेचर जो हम चाहते हैं सिंगल्स, वही डिसाइड किया जाता है. एंड ऑफकोर्स There's no one asking me about diva bill क्यों नहीं time पे किया. तो बस अगर आप single हो, do not worry. जितने भी couples हैं वो भी यही चाह रहे हैं लोग कि वो single ही हो जाते. पर आज officially couples day है तो आज आपको celebrate किया जाएगा. फिलहाल when I come back, we'll play this fun game which is called the 5-second rule. Yes, you got 5 seconds. I give you a few categories. तीन चीजें आपने बतानी होती है 5 सेकंड के अंदर. वैसे एक और फायदा है, अगर सिंगल हो तो आपके पास मौका है टू फ्लाई विद टीम बिग फॉर द अल्टीमेट चेक-इन. Yes, get ready to pack your bags. We are getting ready to take you on an unforgettable trip. The big check-in, it is here. Presenting sponsors, Daniel Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsor, Ford and Sharaf DG. Coming very, very soon on Big 106.2, The Beat of Bollywood. Big.

0: The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Dabur Pudin Hara. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: ताकत का तरकाव विद डाबर शिलाजीत।
2: दिन भर एक्टिव और फोकस रहना है तो डाबर शिलाजीत लीजिए, स्ट्रेच कीजिए और अपनी एनर्जी को रिचार्ज कीजिए। छोटी आदतें बड़ा इम्पैक्ट।
1: ताकत का तरकाव विद डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
3: डिड यू हियर दैट? दैट्स द साउंड ऑफ समथिंग बिग लैंडिंग एट पापा जॉन्स। New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. Six bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
0: Big 106.2. That's my song.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, yeah, Big Thrill and Mansi. I got a WhatsApp from Neeraj and he says, मैं तुम्हें convince कर दूंगा couple बनने के लिए. ओए होए होए होए होए. तो अगर आप couple हो तो मुझे तीन फायदे बताओ कि ऐसा क्या है आपकी जिंदगी में जो सिंगल्स की जिंदगी में नहीं है. Why should we consider getting into a relationship or getting into a partnership? इसी के साथ वी प्लेइंग दिस फन गेम, इट्स कॉल्ड द 5 सेकंड रूल. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, तीन चीज़ें बतानी होती है 5 सेकंड के अंदर. पता है मुझे साउंड्स वेरी वेरी इजी, बट ये उतना ही मुश्किल है जितना मुझे कन्विंस करना टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप एंड टू लीव माय सिंगल स्टेटस. तो अगर आपको लगता है आप ये कर सकते हो, 800-1062 इज द नंबर टू डायल. किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:05।
2: बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, yeah, Big Thrill, मैं हूँ मानसी and उमल क्वीन से आके अजमान बॉर्डर में कहीं फंसे हुए हैं मंसूर साहब. गुड इवनिंग.
3: गुड इवनिंग मैम.
2: कैसे हैं आप सर?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है.
2: नहीं, आप इतने शर्मा के सबसे बात करते हैं कि कुछ स्पेशल है आज?
3: नहीं, पहली बार बात कर रहा हूँ ना.
2: अच्छा, दूसरी बार शर्माओगे नहीं?
3: डर लग रहा है ना.
2: डर किस बात का? आप लड़कियों से बात करने में डरते हैं?
3: हाँ, शादीशुदा बंदा हमेशा डरता है ना.
2: वो सारे नहीं डरते हैं, आप पहले हैं, वरना शादीशुदा बंदे तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं लड़कियों से बात करने में. हमसे पूछिए ना, हमें पता है हमारे आसपास कितने घूमते हैं. क्या करते हैं मंसूर आप?
3: मैं वेयरहाउस मैनेजर.
2: वेरी नाइस. सो आपका काम उमल क्वीन में है एंड आप रहते हैं अजमान में?
3: मैं रहता हूँ दुबई में.
2: अच्छा, तो रोज ये अप डाउन करते रहते हो अजमान उमल क्वीन में? आप मतलब पूरा यूएई घूम लेते हो रोज?
3: हाँ.
2: तो फिर आपके पास टाइम कहाँ होगा? आप अजमान उमल क्वीन यही करते रहोगे तो इसलिए आप जो है घर पे भी कम बात करते हो और घर के बाहर तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम भी नहीं है. क्योंकि ये जो करते है ना बात कई लोगों से, उनके पास बहुत वक्त होता है, क्योंकि वक्त देना भी पड़ता है ना. फिलहाल हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल. इट्स अ फन गेम मंसूर. आपको मिलेंगे 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें आपको बतानी होंगी 5 सेकंड के अंदर. मुझे ऐसे ज्यादा उम्मीद नहीं है आपसे, बट फिर भी खेलते हैं.
1: 5 सेकंड रूल.
4: Oh yeah.
2: 3 सलमान खान की फिल्म्स.
3: हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, बाकी हम आपके हैं कौन.
2: वेरी नाइस यार, पहला बिल्कुल सही, आपने 5 सेकंड में जवाब दे दिया है. 3 ऐसी चीजें जो व्हाइट कलर की होती है, सफेद होती है, आप खा भी सकते हैं.
3: तरबूज होता है,
2: तरबूज सफेद होता है. कौन सा सफेद तरबूज आप खा रहे हो? तरबूज लाल होता है.
3: व्हाइट कैरेट
2: यार, पनीर, दूध, चावल छोड़ के व्हाइट कैरेट ही कौन सी चीजें हैं जो कभी सुनी भी नहीं, और 5 सेकंड भी खत्म हो गए हैं. 3 ऐसी चीजें अगर आपको मौका मिलता तो आप अपनी बेगम के बारे में बदल देते.
3: उनका पेशेंस, शक की बीमारी.
2: किस चीज के लिए शक करती है? बंदा बेचारा जो है वो सारा दिन गाड़ियों में घूमता रहता है, एक टाइम खत्म हो गया, पर मुझे बताओ किस चीज को लेकर शक करती है?
3: ये लड़कियों का नेचर होता है ना, हस्बैंड, उनको लगता है कि दुनिया की पूरी लड़कियां उनके हस्बैंड के पीछे.
2: आप पे तो वैसे शक करना नहीं चाहिए मंसूर, आप तो गाड़ी में घूमते रहते हैं, गर्मी इतनी एक जगह से दूसरी जगह. आप कहाँ किसी लड़की को कहाँ मिलेंगे वेयर हाउस में? आप
3: हमारे पेड़ी ऐसी है कि चांस ही नहीं मिलता.
2: हाँ, तो समझाओ उन्हें, शक ना करें. और गुस्से वाली है?
3: नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, माशाल्लाह.
2: अच्छा, ये जो बात पलटी है आपने. अच्छा, 3 चीजें जो सिर्फ और सिर्फ बीच पे मिलती हैं.
3: शेल
2: और
3: सैंड
2: और हाँ, टाइम खत्म. फटाफट खेलने वाला गेम है. 3 बॉलीवुड एक्टर्स जिनका नाम ए से शुरू होता है.
3: अरबाज खान
2: और
3: आमिर खान.
2: वेरी नाइस.
3: अक्षय
2: कुमार. कौन सा शर्मा?
3: अक्षय कुमार.
2: हाँ, अक्षय कुमार मैंने बोला है, पर आपने बढ़िया खेला. आपके जवाब जो है वो 4-5 सेकंड के बाद आते हैं, बट आपको जवाब पता है. थोड़ी रफ्तार की जरूरत है, थोड़ी रफ्तार की. और आप पहली बार कह रहे थे ना कि बात कर रहा हूँ तो शर्मा रहा हूँ, शायद अगली बार खुल जाए आप तो फटाफट खेलें. मजा आया नहीं आया?
3: नहीं, थोड़ा क्या होता है ट्रैफिक में होते हैं ना, ध्यान थोड़ा रास्ते पे होना चाहिए.
2: ज्यादा ध्यान रास्ते में होना चाहिए, वहाँ पे फाइन लग जाएगा.
3: नहीं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है तो थोड़ा इसके लिए बहुत बहुत मजा आया.
2: चलिए, एंजॉय योर इवनिंग, ड्राइव सेफ एंड थैंक यू सो मच.
3: थैंक यू मैम.
2: बाय. यही 5 सेकंड रूल आपने खेलना है, एक ही रूल है, कॉल करना है मुझे 800-1062 पर.

0: Great news, Ajman. A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward plus exclusive member discounts. Safir Market, more choices, more savings, more reasons to shop.
1: Recalculating route to Sharaf DG for back to school shopping.
2: Parents, you heard that right. Win up to 5,000 dirhams back on laptops and tablets. Get gifts worth 500 dirhams and enjoy an extra 5% student and teacher discount. And that's not all. Save up to 200 dirhams with DIB and Al Hilal Bank. Power up for AI amplified learning. Shop in store or online. TNC Supply.
3: Wow, your hair color looks stunning.
4: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
3: Yeah, right.
4: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
3: Really?
4: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
3: I'm buying it right now.
4: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
0: The Big Jill.
5: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
6: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली. इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ. डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश. डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन. इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री. कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
9: बाहर का तापमान इज टोटली हाई गर्मी. इट इज 37 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 34. फिलहाल आज ह्यूमिडिटी ठीक ठाक है 58% पर.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2.

0: Sia. Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, yeah, Big Thrill, Mansi, and we're playing the 5 second rule. Joining us is Subhash. Good evening.
2: Good evening. कैसे आप?
1: मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो?
2: हम ठीक हैं. ऑफिस खत्म करके घर को जा रहे थे.
1: वेरी नाइस. कैसा रहा ऑफिस में दिन? मन लगा?
2: ऑफिस में मन लगा.
1: चलो, कोई है जो मन लगाता है ऑफिस में आपका?
2: नहीं, ऑफिस में नहीं, घर में है, अभी साथ में बैठे हैं.
1: अच्छा, तो आप कपल हो, सिंगल नहीं हो?
2: यस यस.
1: तो आज नेशनल कपल डे है, तो मुझे 3 रीजंस बताओ कि लोगों को शादी क्यों करनी चाहिए. जैसे मैं सिंगल हूँ.
2: रियलिटी ऑफ लाइफ इज आप सिंगल बहुत देर तक रह सकते हैं, अप टू अ लिमिट, बट आफ्टर सम एज यू नीड अ कंपेनियन.
1: देखो सर, मैंने ऐसे ऐसे लिखने को नहीं बोला है सुभाष आपको. मुझे 3 पॉइंट दो. 3 पॉइंट्स.
2: 3 पॉइंट एक है कि लाइफ में मोटिवेशन रहता है.
1: अच्छा, किस चीज का?
2: आई मीन इट इज अ नेसेसिटी दैट
1: इट इज अ नेसेसिटी
2: है.
1: तो आप अभी ज्यादा खुश हो कि सिंगल ज्यादा खुश थे?
2: मेरा भी ज्यादा खुश है.
1: साइड में है आपकी वाइफ? साइड में बैठी है. अगर बीवी नहीं बैठी होती तो फिर आप कुछ और ही बताते मुझे. Anyway, we'll play this fun game. It's called the 5 second rule. All the very best.
0: 5 second rule.
3: Oh yeah.
1: 3 लड़कियों के नाम जो S से शुरू होते हैं.
2: सहना, सौम्या
1: और है?
2: सहना, सौम्या, सृष्टि.
1: सृष्टि कौन है ये?
2: सृष्टि पता नहीं, आ गया सडनली.
1: अच्छा, और सौम्या और सहना?
2: सहना तो वाइफ है जो मैंने पहले ले लिया था.
1: अच्छा, और सौम्या कौन है फिर?
2: और
1: सहना, आप साइड में बैठी है, प्लीज इनसे पूछिए ये सौम्या कौन है, क्योंकि ऐसे फटाक से नाम आते नहीं है. कपल्स डे के दिन कलेश कराती हूँ मैं इनके. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. 3 हरी सब्जियों के नाम बता दो यार.
2: पालक.
1: ये देखो, इनको आपको सौम्या में इंटरेस्ट होना चाहिए, पालक में नहीं. भाभी जी, पालक से बाहर निकलो, पूछो सौम्या कौन है.
2: अरे कोई नहीं.
1: 3 बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जिनका नाम M से शुरू होता है. ये देखो,
2: माधवन
1: एक्ट्रेस है. माधुरी दीक्षित एक्ट्रेस है, माधवन एक्टर है. इनको 3 M से एक्ट्रेसेस नहीं समझ में आई, बट इन्हें 3 लड़कियों के नाम S से 1 सेकंड में आ गए. मैं कह रही हूँ दया, दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी काली दाल है. सुभाष,
2: यार आपकी मैरिज डबल कोट.
1: सुभाष, कौन है सौम्या? कौन है सौम्या?
2: I'll put this in my Instagram status. Who is Soumya?
1: Who is Soumya? She will ask after I hang up. Happy National Couples Day. Enjoy your evening. Okay, bye. Yeah, 5 second rule. आपने खेलना है कि rule है call करना है मुझे 800-1062 पर.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: 1 + 1 = 3.
2: That's not right.
1: It is with Skechers. When you buy 2 pairs of kids' shoes for 399 dirhams, you get a free school kit.
2: Really? And these 4 designs to choose from?
1: Yes, really! There's something for you too, Mom. You can buy any 2 shoes for 599 only.
2: Hurry to your nearest Skechers store. Offers are valid for a limited time only. T's and C's apply.
3: School's starting soon and we need a car.
4: Books, uniforms, everything.
3: Don't worry, I found the best back-to-school offer on Self-Drive. Self-Drive cars from just 1,099 dirhams per month, flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
3: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with Self-Drive from 1,099 dirhams per month, flat rate. Self-Drive, get ready, get driving.
6: Fasten your seatbelts. क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. From high speed chases down the autobahn to dramatic Dawn 2 style views, we're taking you straight into a blockbuster adventure. We are keeping it a top secret, so start guessing. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor, Danu Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsor, Ford. Coming soon on Big 106.2.
7: Digestion cool tips with Dabur Pudin Hara.
8: AC से रूम कूल होता है, डाबर पुदीन हरा से टमी फील्स कूल. वन टाइनी पर्ल विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स हेल्प सूथ इनडाइजेशन डिस्कम्फर्ट नेचुरली.
7: डाबर पुदीन हरा, स्टे इनडाइजेशन फ्री द नेचुरल वे. अवेलेबल ऑन नून मिनट्स. कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन.
9: Don't miss out with Big Ticket.
10: 15 million dirham grand prize.
9: Win up to 1 million dirhams with Big Spin.
10: Plus 5 consolation prizes.
9: Buy now at bigticket.ae.
11: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
12: Hey, jaldi hata mera khatana.
0: Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
13: एक्सट्रीमली स्लो मूविंग ट्रैफिक अगर आप रासलपुर इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास हैं, इट इज पैक्ड एट द मोमेंट. बम्पर टू बम्पर सिचुएशन अगर आप शेख जायद पे, फिलहाल 48 मिनट डिले. हैवी ट्रैफिक नियर दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट प्लस जद्दाफ के पास भी देर इज पैची ट्रैफिक. इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स फहीदी, इट्स स्टिल द सेम, इट इज काइंड ऑफ स्टैंड स्टिल. इसके अलावा थोड़ा बहुत ही सही आपको ट्रैफिक मिलने वाला है अगर आप मरीना से जा रहे हैं JBR की तरफ. एंड हल्का फुल्का ट्रैफिक नियर जुमेरा 3. एनीथिंग एल्स यू लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर.
0: Sia, Self Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, ye hai Big Thrill, main hu Mansi. We're playing the 5-second rule and joining us is Huda. Hi Huda.
2: Hi Mansi, how are you?
1: I'm good, how are you?
2: I'm good, thank you.
1: Aaj hai National Couples Day, to aap couple ho, single ho?
2: Main couple hu.
1: अच्छा इतना सोच के बताया तो तीन फायदे बताओ कपल होने के. कन्विंस मी दैट आई शुड गेट इनटू अ रिलेशनशिप और गेट मैरिड प्रॉब्ली.
2: गेटिंग मैरिड आई डोंट नो बट ऑफ कोर्स यू शुड हैव अ पार्टनर.
1: गिव मी थ्री बेनिफिट्स ना, तीन फायदे बताओ मुझे.
2: सो द बेनिफिट्स इज यू गेट इमोशनल सपोर्ट, यू कैन शेयर द थिंग्स विद देम वेरी इजीली एंड देन यू कैन बी विद देम व्हेन दे आर सिक और व्हेन यू आर सिक दे आर गोइंग टू बी विद यू एंड you know, share their happiness, sadness, whatever. So
1: perfect.
2: Many reasons, you know.
1: Perfect.
2: To have a couple.
1: How long it has been for you in a relationship?
2: Almost reaching 1 year.
1: 1 year ना, ये अभी नया नया है क्योंकि जिस इमोशनल सपोर्ट की आप बात कर रहे हो, जब मेरा हुआ था रिलेशनशिप उसके बाद थेरेपी लगी थी मुझे, तो कहीं और से ही सपोर्ट मिला था. फिलहाल विल प्ले द 5-second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. तीन चीजें बतानी है 5 second के अंदर.
0: 5 second rule.
3: Oh yeah.
1: थ्री बॉलीवुड मूवीज जिसमें वेडिंग सीक्वेंस था.
2: मुझसे शादी करोगी?
1: अरे यार इतने सारे थे. कभी खुशी का बेगम में भी था,
2: ये
1: जुग जुग जियो में था, कल हो ना हो, बहुत सारे हैं. बॉलीवुड तो थ्राइव्स ऑन वेडिंग सीक्वेंसेस. क्विकली टेल मी तीन ऐसे गाने जिनमें आता है द वर्ड दिल.
2: दिल my God,
1: की धड़कन में. अच्छा तीन ऐसी चीजें दैट यू मिस हुडा अबाउट बीइंग सिंगल. तीन चीजें जो आपको अच्छी लगती हैं प्यार में, तीन एफर्ट्स जो आपका पार्टनर आपके लिए करता है.
2: कुकिंग
1: प्लेइंग क्लीनिंग. मैं समझ नहीं पा रही हूँ.
2: क्लीनिंग.
1: अच्छा कुकिंग क्लीनिंग. अच्छा ये करता है कुकिंग क्लीनिंग, तभी आपको इमोशनल सपोर्ट. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, पीपल विल सडनली नॉट लाइक इट.
2: बट सी एवरी पार्टनर शुड यू नो गिव एंड टेक इक्वली, सो वी सपोर्ट ईच अदर.
1: एब्सोल्युटली एग्री, एब्सोल्युटली एग्री. तीन इमरान हाशमी की मूवीज. आवारापन टू अभी रिलीज हुई है, कपल्स डे. अपने बंदे के साथ जाओ देख कर आओ. मिला कहाँ था आपको ये आपका पार्टनर?
2: इधर ही दुबई में.
1: किधर दुबई में? बहुत सारी लड़कियां मेरी तरह सिंगल हैं, हमें नहीं मिल पा रहा है, तो कहाँ जाएं?
2: ये तो मैं नहीं बता सकती, बट ऑफ कोर्स
1: यार बता दो. हेल्प अ फ्रेंड या कुकिंग क्लीनिंग इमोशनल सपोर्ट मुझे भी चाहिए. इमोशनल सपोर्ट मैं कर लूंगी बट कुकिंग क्लीनिंग आई डोंट माइंड.
2: Something very important, you know, being a friend is important too as well.
1: ये देखो ये relationship से शुरू होके इसने friend zone ऐसे किया है ना हुडा ने, mind blowing. You have a great evening game. बहुत ही खराब खेला आपने. But enjoy your dates. National Couples Day, so probably go on a date. Have fun.
2: Okay, thank you so much.
1: Bye bye. Yeah, 5 second rule. मैंने कहा ना, it sounds very very easy, but easy नहीं है. आपको खेलना है तो 800-1062 number है. Phone लगाओ मुझे, absolutely free toll free number है.
0: Big 106.2. Yeah!

0: फैसन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. फ्रॉम हाई स्पीड चेजेस डाउन द ऑटोबान टू ड्रामेटिक डॉन 2 स्टाइल व्यूज, वी आर टेकिंग यू स्ट्रेट इनटू अ ब्लॉकबस्टर एडवेंचर. वी आर कीपिंग इट अ टॉप सीक्रेट, सो स्टार्ट गेसिंग. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor Danu Properties. Coming soon on Big 106.2.
1: School's starting soon and...

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Hansi, I'm sure you've received the safety alert as well. Like I mentioned, whenever you get an emergency alert, panic karne ki zarurat nahi hai. Panic phailane ki bhi zarurat nahi hai. Don't just start randomly messaging people. The authorities, they've taken care of us. They will take care of us. So yes, keep driving if you get an alert while you're driving. And agar aap outdoors hain, to bas indoors chale jaiye. That's it. फिलहाल यहाँ पर वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग टुडे दिस मूवी जो आई थिंक वॉज अ चेंजिंग पॉइंट ऑन हाउ पीपल सॉ कृति सैनन. शी इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, बट इस मूवी से पहले लोगों को पता ही नहीं था कि वो इतनी कमाल एक्ट्रेस है. पंकज त्रिपाठी, आयुष्मान खुराना, कृति सैनन, राजकुमार राव, आज ही के दिन ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी. मोर ऑन दिस व्हेन आई कम बैक. फिलहाल किक स्टारिंग दिस आवर विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: हाँ जी, द टाइम राइट नाउ 7:11।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Make the school run easier in a brand new Ford. Whether in a spacious Explorer, capable Everest, refined Taurus, or versatile Territory, you'll enjoy comfort, confidence, and smart technology every day. For a limited time, get your down payment covered. Enjoy 5 years or 100,000 kilometer service and warranty. 5 years Ford app access and pay nothing until 2027. Ready, set, Ford. Visit your nearest Altair Motors or Premier Motors showroom today. Shop online or call 800-MOTORS. Conditions apply.
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. The Big Jill.
5: All my favorite music in one spot.
1: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
6: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. 6 bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
2: स्टिल 37 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 34, ह्यूमिडिटी फिलहाल 58% पर।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2। बिग 106.2।

0: you are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Almost आधे से ज्यादा 2026 जो है निकल चुका है, एंड इस साल इफ यू हैव नॉट टेकन अ ब्रेक, आप वेकेशन पे नहीं गए हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, आई हैव गॉट द परफेक्ट वेकेशन प्लान फॉर यू. गेट रेडी टू पैक योर बैग्स बिकॉज योर ड्रीम हॉलीडे इज कमिंग वेरी वेरी सून विद द बिग चेक इन. यस, वी हैड सम ग्रेट चेक इन्स इन द पास्ट, वी हैव टेकन यू टू सम ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल डेस्टिनेशंस, बट दिस टाइम इट इज बिगर एंड बेटर देन एवर. प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर डैन्यू प्रॉपर्टीज, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, एसोसिएट स्पॉन्सर फोर्ड एंड शराफ डीजी. Coming very very soon on Big 106.2. In fact, let me give you a chotu sa hint ki hum aapko kahan le jane wale hain. You might just want to start saying Guten Tag. Agar aapne guess kar liya hai, head to our Instagram page and comment. Where are we taking you this year for the big check-in? 106.2 Big FM, that's our Insta handle.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: honestly, that day I was watching Cocktail 2 and I loved the movie though, but I really want to see Shahid in a movie like Heather or probably Urta Punjab. It's been a while.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: कुछ मूवीज ना फील गुड होती है, इन्हें देख के आपको हंसी भी आती है, मजा भी आता है, एंड ये एक ऐसी मूवी है जो आज ही के दिन 2017 में रिलीज हुई थी. आई स्टिल रिमेंबर इब्न बतूता पे मैंने ये मूवी लास्ट शो देखा था एंड आई थॉरली एंजॉयड इट. एंड आफ्टर दिस मूवी आई बिकेम अ बिग फैन ऑफ पंकज त्रिपाठी एंड कृति सैनन. इनफैक्ट आफ्टर दिस मूवी इन्होंने और भी मूवीज साथ की हैं, बट ऑन दिस वेरी डे 2017 में We met Bitti. Let me see how many of you remember this movie.
2: तुम ही जानते हो ना, एक बार मिलवा दो ना हमें.
3: गजब प्रीतम प्यारे.
4: लड़की तुमसे मिलना चाहती है, एक बार तुम उससे मिल लो, उसका दिल तोड़ दो, हम जोड़ लेंगे, तुम कट लो, फिर तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, समझे?
5: अब आपका दिल टूटा चाहे फूटे उससे हमें क्या?
3: ए बहुआ.
0: मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी ये मूवी. इनफैक्ट ये मूवी मैं फ्लाइट में भी देखती हूँ. व्हेनेवर आई एम ट्रैवलिंग समवेयर, अगर ये मूवी होती है तो आई जस्ट प्ले दिस वन. आई डोंट नो, देयर इज समथिंग वेरी हैप्पी अबाउट दिस मूवी. आज ही के दिन इन 2017 ये मूवी रिलीज हुई थी. आई एम जस्ट थिंकिंग कि इस मूवी को भी जो है 10 साल होने वाले हैं. टाइम इज फ्लाइंग. अगर आपने गेस कर लिया है द मूवी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, देन 800-1062 इज द नंबर टू डायल.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: गुड इवनिंग, यह है बिग थ्रिल मानसी। एंड अब ये सुनो, अब इंडिया में लोग खाने के शौकीन हैं एंड बहुत सारा स्ट्रीट फूड एक्सपेरिमेंटल होता है। अब इसी कैटेगरी में आ चुकी है, ध्यान से, दिल की धड़कनें जो है तेज हो जाएंगी गुस्से में, गुलाब जामुन लाते। आज से पहले गुलाब जामुन के पराठे, नॉट बैड। राजस्थान में गुलाब जामुन की सब्जी बनती है, विच इज नॉट बैड। गुलाब जामुन पाव के अंदर वॉज ऑल्सो ओके, बेरेबल, बट गुलाब जामुन लाते, ऐसे लोगों को ना लाटे नहीं कुछ और मारने का मन करता है। फिलहाल वुड यू एवर ट्राई समथिंग लाइक दैट? अगर आपको कोई बोले कि आई एम गोना गिव यू अ डेयर और अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू ट्राई समथिंग लाइक अ गुलाब जामुन लाटे, वुड यू गो एंड कमेंट? देयर इज अ पोल अप ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज 106.2 बिग एफएम।

0: मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: ऑलमोस्ट 8:30 बाहर, फिर भी टेम्परेचर 37 पे है। लो जाएगा अराउंड 34, ह्यूमिडिटी फिलहाल 56% पर।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

2. The beat of Bollywood.

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: हाशमी इज बैक विद आवारा पंटू. इन फैक्ट एक वीडियो वायरल हो रहा है एक इवेंट के लिए. इमरान हाशमी वॉज वॉकिंग आउट, मालिका शरावत वॉकड इन एंड द पैप्स वेंट क्रेजी एंड सो डिड द फैंस लाइक अस. सडनली टुक अस टू द मर्डर डेज.
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: I know that Malika Sharawat and Imran Hashmi are not a big fan of each other, but I would really want them to do a movie again. I think हम millennials अभी तक उसी ज़माने में अटके हुए हैं, 2000s era. फिलहाल अगर आजकल आप भी अटके से रहते हैं, मतलब you feel weak, you feel that there is no confidence. पूरा दिन यू आर फीलिंग वेरी वेरी लेजी. यू डोंट हैव टू वरी, इतनी स्ट्रेस है ज़िंदगी में. फास्ट लाइफ है, फास्ट फूड है, ये सब होना बहुत नॉर्मल है. बट अब इसका सोल्यूशन है, जस्ट हैव डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स. दे हेल्प इंक्रीज योर मसल स्ट्रेंथ, योर स्टैमिना एंड योर पावर. अगर आप शेर की तरह मजबूत बनना चाहते हैं, दिन की शुरुआत कीजिए डाबर शिलाजीत के साथ. एंड दीज आर 100% नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स दैट मेक यू फील स्ट्रॉन्ग एंड मोर कॉन्फिडेंट. आपकी जीत डाबर शिलाजीत के साथ. डू कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग any medicines or pharmaceutical products. And like I said, 2026 jaisa bhi ho hum millennials ke liye, it's a year full of nostalgia. Imran Hashmi making a comeback and now Zoya Akhtar ne announce kar diya hai aaj ke Zindagi Na Milegi Dobara ka sequel aane wala hai.
2: ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente. Y da sentido toda mi vida con tu querer.
3: Na me samjha, na me jana. Jo bhi tumne mujhse kaha hai, señorita. Magar phir bhi, na jaane kyun.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: वैसे अगर मोहब्बत के बीच में आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स को ले आते हो ना, तो यही होता है जो कॉकटेल 2 में हुआ। आई विल नॉट गिव यू स्पॉइलर्स, बट कभी कभार थर्ड व्हीलिंग कराते कराते गाड़ी पलट जाती है। आप ये मूवी देखो, यू विल अंडरस्टैंड। ऑफिशियली कपल्स डे है आज, एंड देयर इज अ पोल अप ऑन इंस्टाग्राम। सो हाइपोथेटिकली आई एम टॉकिंग टू माई सिंगल वॉरियर्स, अगर आपको मौका मिलता तो आप किस कपल जैसा बनना चाहते? टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ बॉलीवुड कपल्स, would you like to be like Virat and Anushka, the ideal green flag couple? Probably Deepika and Ranveer, or my personal favorite Saif and Kareena? Head to our Instagram page and vote now. 106.2 Big FM it is.
1: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood. Fasten your seat belts, kyunki डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। From high speed chases down the autobahn to dramatic Dawn 2 style views, we're taking you straight into a blockbuster adventure. We are keeping it a top secret, so start guessing. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor Danu Properties, title sponsor Papa John's, associate sponsor Ford. Coming soon on Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
2: Insurance market. What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the My Alfred app. Insurancemarket.ae.
3: जब चाहिए effective relief from indigestion, तब डाबर पुदीना रा दे आपको relief naturally. इसके छोटे से pearl में है आयुर्वेदिक mint oils, जो आपके stomach को देता है soothing relief. डाबर पुदीना रा से आप होंगे relaxed और fresh. डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
4: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
5: नहीं, ये तो मुफ्त है।
4: गुड, चलो फोन लगाओ।
1: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

yeah, keep it going, guys. Jarvis on piano.

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। द बिग जेल brought to you by insurancemarket.ae for the best insurance deals in the UAE. Call 800-ALFRED-247. Big 106.2, the beat of Bollywood.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

You are listening to The Night Shift on Big 106.2. The Beat.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।